ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 16वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 7 जुलाई सन 2026। इस समय सवेरे के 5:57 हो चुके हैं। हमारी आज की ये सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। इस समय सवेरे के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया

0: ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी चार राष्ट्र की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहाँ गुल हो गई, वे कहाँ चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से जारी है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा कर्नाटक में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस।
3: एपिसोड नंबर 49।

इस संसार में न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वो उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। एक बार सुंदर पर्वत नदी और वनों को देख नारद जी का भगवान के चरणों में असीम प्रेम जागृत हो गया। यहां तक कि दक्ष प्रजापति द्वारा नारद को दिए गए श्राप की गति भी रुक गई और नारद समाधि में लीन हो गए। नारद की समाधि से भयभीत होकर इंद्र ने कामदेव से प्रार्थना की कि वो किसी प्रकार नारद की समाधि को भंग करे। कामदेव ने नारद की समाधि को भंग करने के अनेक प्रयास किए पर असफल रहा। अंत में भयातुर कामदेव ने नारद के चरण पकड़कर उनकी स्तुति की। इस घटना के बाद नारद के मन में अभिमान जागृत हुआ कि उन्होंने कामदेव को भी जीत लिया है।

अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस, स्वर थे अनुराधा पौंडवाल के और संगीत संयोजन सतीश भाटिया का।

विचार, समस्याओं से निराश नहीं होना चाहिए, डटकर उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। आइए सुविचार के पश्चात सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

नदिया से जागी बहार, गाने का नाम हीरो फिल्म से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, बोल आनंद बख्शी के और संगीत संयोजन लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का।

अभी आपने सुना भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत की ये अगली पेशकश बालिका वधू फिल्म से अमित कुमार की आवाज़, आनंद बख्शी की बोल और आर डी बर्मन का संगीत।

अभी आपने सुना फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम, कुछ बातें कुछ गीत।

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे सभी प्यारे श्रोताओं को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आज की सुबह आपके लिए पॉजिटिव, खुशियों से भरी और फ्रेश एनर्जी लेकर आई होगी। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो बड़ी नीतू और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम कुछ बातें कुछ गीत। दोस्तों, सुबह का समय जादुई होता है। सुबह का मतलब नई शुरुआत, नई एनर्जी और नई उम्मीद। कल जो हुआ सो हुआ, आज एक नया दिन है, एक नया चांस कुछ नया करने का, कुछ अच्छा सोचने का और खुद का बेस्ट वर्जन बनने का। तो बताइए, क्या आप एक मॉर्निंग लवर है यानी कि सुबह जल्दी उठना पसंद करते हैं, या अलार्म को स्नूज करते रहने वालों की टीम में है? कोई बात नहीं, आज की सुबह हम सबके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज का जो विषय है जिस पर हम बात करेंगे वो होगा सुबह का समय।

श्रोताओं, जो सुबह का समय होता है वो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह एक नए दिन की शुरुआत का समय है जब सारा प्राकृतिक आदर्श होता है। सूर्योदय के साथ ही हवा में ताजगी भर जाती है और वातावरण में एक नई ऊर्जा हमें महसूस होती है। सुबह की शांति और ताजगी हमें नए दिन के लिए तैयार भी तो करती है ना श्रोताओं। और वैसे भी कहते हैं कि हर सुबह एक नया पैगाम लेकर आती है। जो मुस्कुराए वही जिंदगी जीत जाती है।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं कुछ बातें कुछ गीत और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी नीतू। दोस्तों, सुबह की पहली किरण का अपना एक अलग चार्म होता है। ठंडी हवा, बहुत ही ताजगी भरा वातावरण और एक ब्यूटीफुल सा साइलेंस सुबह हमें एक चीज़ सिखाती है, रोज एक फ्रेश स्टार्ट करना। जी हाँ, और ये भी बताती है कि रोज़ अगर हम एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं तो ये चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि कल अगर मुश्किल था तो आज बेहतर हो सकता है, कल अगर बहुत ही तनाव भरा था तो आज शांति भी हो सकती है। बस ज़रूरत है कि हम अपने माइंडसेट को बहुत ही सकारात्मक रखें।

श्रोताओं, ये एक मज़ेदार सवाल आपके लिए भी है कि सुबह उठते ही हम क्या करते हैं? हमारा मोबाइल चेक, चाय, कॉफ़ी या फिर प्रार्थना, या फिर वापस सो जाते हैं? सुबह की जो हैबिट्स होती हैं वो हमारा पूरा दिन डिसाइड करती हैं। अगर सुबह अच्छी होगी तो दिन जो है वो एकदम स्मूथ चलता है। इसलिए कहते भी है ना कि उठते ही एक स्माइल ज़रूर रखनी चाहिए चेहरे पर, और खुद से कहना चाहिए कि आज कुछ अच्छा ज़रूर होगा।

श्रोताओं, अगर हम सुबह सुबह उठकर कोई शारीरिक व्यायाम कर रहे हैं या सैर पर जा रहे हैं, तो ना ये केवल हमारी दिनचर्या का एक हिस्सा बनता है, बल्कि ये हमारे शारीरिक क्षमता में सुधार भी करता है, हमारे हृदय को मजबूत बनाता है, हमारा वजन भी इससे नियंत्रित होता है और ऊर्जा का जो स्तर है वो भी बढ़ जाता है, तनाव कम हो जाता है और मन शांत। और इतना ही नहीं, ये हमें प्रकृति और जो सकारात्मक विचार हैं उनसे जोड़ता भी है। और ये बात केवल एक उम्र तक ही सीमित नहीं है, बच्चों, वयस्क और बुजुर्गों सभी के लिए ये चीज़ समानता से अप्लाई होती है। सुबह की सैर को आदत बनाना हमारे स्वास्थ्य और जो कल्याण होता है उसमें निवेश करने का एक बेहतरीन साधन हम कह सकते हैं।

श्रोताओं, सुबह जो है वो सिर्फ एक समय नहीं होता, ये एक माइंडसेट होता है। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उनमें एक नया कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि उन्होंने दिन की जो शुरुआत है वो दुनिया से पहले कर दी होती है। सुबह हमें फोकस देती है, क्लैरिटी देती है और मोटिवेशन भी देती है। यही समय है जब आप अपने गोल्स को, अपने लक्ष्यों को याद कर सकते हैं, उनके बारे में आगे क्या करना है हम अग्रसर हो सकते हैं।

श्रोताओं, जो ज़िंदगी है वो कभी परफेक्ट तो होती नहीं। चैलेंजेस आते हैं, अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, लेकिन हर सुबह जो होती है वो एक हमें संदेश देती है कि हमें गिव अप नहीं करना है, क्योंकि सुबह ही हमें सिखाती है कि हर रात के बाद जैसे सुबह आती है, वैसे ही हर स्ट्रगल के बाद, हर परेशानी के बाद सफलता भी ज़रूर आती है। बस बशर्ते हमें चलते रहना है, रुकना नहीं है।

सुबह जल्दी उठना चाहिए। इसके फायदे, इस पर तो हमने बात कर ली श्रोताओं, लेकिन कुछ लोगों को ये भी समस्या आती है कि हम सुबह जल्दी उठना तो चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पाते। तो उसके लिए हम ये कुछ टिप्स है जिसे फॉलो कर सकते हैं, वो ये है कि इसके लिए हमें रात को जल्दी सोना होगा। जी हाँ, रात को जल्दी सोने की जो आदत है, अगर हम वो डालेंगे तो हम सुबह जल्दी उठ पाएंगे, क्योंकि शरीर जो है वो कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद ले पाता है अगर हम जल्दी सोएंगे तो। अलार्म का हम सही उपयोग भी कर सकते हैं, जैसे अलार्म को बिस्तर से थोड़ी दूर रखें जिससे उसे बंद करने के लिए हमें उठना पड़े। और स्क्रीन से दूरी भी एक महत्वपूर्ण टिप है इसके लिए, क्योंकि कम से कम सोने से पहले 1 घंटा अगर हम मोबाइल या टीवी बंद कर देते हैं तो हमें नींद आने में आसानी होती है।

श्रोताओ, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, इससे बहुत लाभ होते हैं। ये सिर्फ हमारी दिनचर्या का हिस्सा ही नहीं बन जाता, बल्कि अगर हम विद्यार्थी हैं तो सुबह उठकर अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये हमें हमेशा के लिए याद रहता है। सुबह उठकर अगर हम व्यायाम कर रहे हैं तो हमारे शरीर को बहुत फ़ायदा होता है, इससे हमें कोई बीमारी नहीं होगी, हम स्वस्थ रहेंगे। सुबह जल्दी उठने से जो हमारा मन है वो पूरा दिन शांत रहता है और स्थिर रहता है। श्रोताओ, अब हमें खुद से ये जिद तो करनी होगी ताकि हम सुबह जल्दी उठ पाएँ।

श्रोताओं, आज का ये सफर यहीं तक। जाते जाते बस इतना कहना चाहूंगी कि सुबह सिर्फ सूरज नहीं लाती, ये उम्मीद लाती है, नई सोच, नई खुशी और नई शुरुआत। हर सुबह को स्पेशल बनाइए, स्माइल के साथ दिन की शुरुआत कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जो सुबह की किरणें हैं वो ये हमें समझाती है कि रोज नई शुरुआत के मौके आते हैं। मैं आपके साथ आपकी रेडियो सखी नीतू फिर मिलेंगे, किसी नए विषय पर बात करेंगे नए गीतों के साथ, और तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पॉजिटिव रहिए।

अभी आपने सुना कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। इस समय सवेरे के 8 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज़, जिसे हम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। मांगे पूरी नहीं होने पर 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी। भारत ने अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते और फुटबॉल

0: में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी करेंगे।
1: प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 बजे औपचारिक स्वागत समारोह से होगी। इसके बाद अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहां श्री मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करने के लिए चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। इस साझेदारी की स्थापना उनकी 2018 की यात्रा के दौरान हुई थी। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
2: India and Indonesia are very close and strategic partners.
3: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉ जयशंकर चार खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। डॉ जयशंकर ने बहरीन में प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉ जयशंकर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
4: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि 30 क्षेत्रों में फैली 85 लाख से अधिक सहकारी समितियों और 32 करोड़ सदस्यों को सम्मिलित करने वाला एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया गया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की भूमिका का विस्तार किया है। इससे वे साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
4: आज पूरे देश के पैक्स एक ही बायलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया, 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम CSC की सेवाएं दे रहे हैं।

0: काम कर रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बढ़ती राजनीतिक उथल-पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने एक औपचारिक घोषणा में कहा कि उनका मौजूदा धरना प्रदर्शन तब तक अनिश्चित काल तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी सभी मांगे पूरी नहीं की जाती। कमेटी ने पीओके के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में अपने 6वें स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्स फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है। इस जहाज का नाम पूर्वी घाट की भव्य महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह जहाज लचीलेपन, शक्ति और अटूट संकल्प का प्रतीक है। महेंद्रगिरी जहाज अब एक विशिष्ट विरासत बनने और भारत के समुद्री इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है। यह जहाज आधुनिक संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन प्रणाली से संचालित है। यह इसे समुद्री अभियानों के पूरे स्पेक्ट्रम में असाधारण मजबूती के साथ उच्च गति संचालन करने में सक्षम बनाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों, सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों और जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएंगी। और अब खेल खबरें। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर-20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक जीते हैं। महिला वर्ग में भारत 184 अंक के साथ उपविजेता रहा, जबकि पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। और बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फुटबॉल में बेल्जियम ने सिएटल में चल रहे फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमरीका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बेल्जियम अब शुक्रवार को लॉस एंजल्स स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना करेगा। इससे पहले स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम

0: में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सर फिरोजी।
1: धन्यवाद विशाल। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव और सदस्य के इस्तीफे आज के सभी अखबारों की पहली बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, चंपत राय और अनिल मिश्र को कामकाज से विश्राम, इस्तीफे मंजूर। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, राम ट्रस्ट कृष्ण भरोसे, पूर्व IFS अधिकारी कृष्ण मोहन बनाए गए अंतरिम महासचिव। दैनिक जागरण ने SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र दोषी, चंपत राय का नाम गायब। घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे, भ्रष्टाचारियों से वसूलेंगे पाई पाई, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान अमर उजाला में है। कोलकाता में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा, घुसपैठियों की पहचान कर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने हाफिज सईद को बनाया आरोपी। देशबंधु के अनुसार पूरक आरोप पत्र में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्करे तैयबा के सरगना पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकी साजिश रचने का आरोप। नीट PG परीक्षा के पैटर्न में फेरबदल की खबर हिंदुस्तान में है। 30 अगस्त को कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित होगी परीक्षा, अब 200 की जगह 180 सवाल पूछे जाएंगे। बार बार यातायात नियमों के उल्लंघन पर निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस। दैनिक जागरण के अनुसार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय की मोटर वाहन कानून में बदलाव की तैयारी।
0: धन्यवाद सर फिरोजी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today to provide fresh momentum to comprehensive strategic partnership between the two countries. Home and Cooperation Minister Amit Shah says Cooperation Ministry infused new energy into lives of nearly 30 crore people over the past 5 years. Pakistan-occupied Kashmir protesters issue 48-hour ultimatum to Islamabad. Warn of grand and final action on July 9th if demands are not met. India secure 20 medals including 4 gold at under 20 Asian Wrestling Championships in Pattaya. And Spain book place in FIFA World Cup quarterfinals with a dramatic 1-0 victory over Portugal. Belgium beat US 4-1 to enter the quarterfinals. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today. Mr. Modi arrived in Jakarta yesterday on a three-day state visit at the invitation of Indonesian President. In a special gesture, President Prabowo personally received the Prime Minister at the airport. Indonesian Air Force fighter jets escorted

0: आपके अपने पसंदीदा शो जिसे हम और आप मिलकर कहते हैं नमस्कार। श्रोताओं, मैं हूं आपका दोस्त और मेजबान हिमांशु अवस्थी और मेरे साथ हाजिर है
1: मीता मुल्तानी।
0: श्रोताओं, मानसून का दौर शुरू हो चुका है। आसमान में छाए बादल, ठंडी ठंडी हवाएं, मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू और बूंदों की मधुर रिमझिम हर सुबह को कुछ और खास बना देती है। हर नई सुबह बारिश की हर नई फुहार की तरह अपने साथ एक नई उम्मीद, एक नई सोच और एक नया मौका लेकर आती है। तो आइए इस खूबसूरत और सुहानी सुबह की शुरुआत करें एक शांत मन के साथ, सकारात्मक सोच के साथ और ढेर सारी नई उम्मीदों के साथ। लेकिन इस खूबसूरत सफर में आगे बढ़ने से पहले आइए मिलते हैं उन खास लोगों से जो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर अपनी मेहनत, अपने समर्पण और मुस्कान से इस पूरे सफर को सफल और बहुत यादगार बनाते हैं। मिलते हैं, तो चलिए मिलते हैं अब हमारी तकनीकी टीम से।
1: ट्रांसमीटर पर हमारे साथ हैं पारसपुरी गोस्वामी और फारूक अहमद शेख। कंट्रोल रूम से कंट्रोलिंग कर रहे हैं इंजीनियर प्रवीण कुमार। कंसोल पर हमारे साथ हैं प्राइमरी चैनल पर नीतू। एफएम पर हमारा साथ दे रही है कविता सांखला। और नमस्कार कार्यक्रम की प्रस्तुति है राजेश लामरोड़।

दोस्तों, बारिश बारिश एक ऐसा मौसम जिसका इंतज़ार शायद हर कोई करता है। जैसे ही आसमान में काले बादल छाते हैं, ठंडी ठंडी हवा चलती है और मिट्टी की पहली खुशबू हवा में घुलती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरी धरती मुस्कुरा उठी हो। तो आज का हमारा नए नवेले गीतों का सफ़र समर्पित है बारिश को, उसकी यादों को, उसकी खुशियों को और उन छोटी छोटी बातों को जो इस मौसम को सबसे ज़्यादा खास बना देती हैं। अगर आप इस समय कहीं सफ़र कर रहे हैं, या ऑफिस में हैं, या घर पर हैं, या फिर खिड़की के पास बैठकर चाय की चुस्की ले रहे हैं, और तो सुनते रहिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम जिसे हम और आप मिलकर कहते हैं नमस्कार।

0: दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं, बारिश सुनते ही सबसे पहले आपको क्या याद आता है? किसी को कागज़ की नाव याद आती है, तो किसी को स्कूल की छुट्टी, किसी को गर्मा गर्म पकौड़े, तो किसी को अपनी पहली मोहब्बत। बचपन में बारिश सिर्फ बारिश नहीं होती थी, वो तो पहली आज़ादी होती थी।
1: जी हाँ, बिल्कुल। छत पर नाचना, गली में खेलना, नाव चलाकर उसमें तिराना, पानी में कीचड़ में कूदना, और घर लौटते ही घर वालों से डांट खाना। लेकिन सच कहूँ, वो डांट भी कितनी प्यारी लगती थी। आज हम बड़े हो गए हैं, बारिश आते ही सबसे पहले मोबाइल निकालते हैं, कभी रील बनाते हैं, कभी सोशल मीडिया देखते हैं। लेकिन कभी-कभी मोबाइल को जेब में रखकर अब बारिश को भी महसूस तो करें। उसकी भीनी-भीनी जो खुशबू है, मिट्टी की सुगंध, उसे महसूस करें और एक बार सोचें उन पलों को कि अब कितनी सकारात्मकता आ गई है बारिश से हमारे जीवन में। तो सुनते हैं नेक्स्ट म्यूजिकल ट्रैक।

0: दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, पहली बारिश के बाद मिट्टी से जो खुशबू आती है वो इतनी अच्छी क्यों लगती है? वैज्ञानिक इसे पैट्रिक कोर कहते हैं। लेकिन हमारे लिए ये सिर्फ खुशबू नहीं है, ये बचपन की यादें हैं और एक सुकून है जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं होता। पहली बारिश जैसे हमेशा कहती है, सब कुछ फिर से नया शुरू किया जा सकता है, सिर्फ आपके करने की देर है।
1: बिल्कुल, बारिश मौसम में ताजगी लाती है, ठंडक लाती है, और जैसा हमने अभी पहले भी बात की कि एक सकारात्मकता, पॉजिटिव सोच जो है, क्योंकि एकदम हम फ्रेश हो जाते हैं बारिश में, और हमारे आसपास इतनी सुंदर प्रकृति की जो ये सुरम्यता है ना, वो बारिश में ही नज़र आती है। पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, खेतों में फसलें लहलहाती है, नदियों और तालाबों में पानी का स्तर बढ़ जाता है। तो ये जो बारिश है ना, ये हमेशा महसूस करने की चीज है। और अब हम सुनते हैं ये नेक्स्ट ट्रैक।

0: दोस्तों, बारिश और चाय की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। घर की बालकनी, खिड़की, हल्की हल्की बारिश और हाथ में अदरक वाली गर्मा गर्म चाय, साथ में पकौड़े या भुट्टा, या फिर सिर्फ अपने पसंदीदा इंसान का साथ, इतनी सी बात पूरे दिन को खूबसूरत बना देती है।
1: लेकिन दोस्तों, जब बात चाय की और पकोड़े की हो रही है तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। बरसात के मौसम में हमेशा ताजा, हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन ही करना चाहिए। संक्रमण से बचने के लिए उबला या फिल्टर किया हुआ पानी पिएं। अपनी डाइट में गर्म सूप, उबली हुई मौसमी सब्जियां, अदरक तुलसी की चाय, पौष्टिक खिचड़ी या दलिया, इस तरह के जो चीजें हैं जो हमारे शरीर में आसानी से पाचन क्रिया को दुरुस्त करती हैं, वे ही बारिश में, मानसून में काम की हैं। क्योंकि मानसून में पाचन क्रिया थोड़ी सी धीमी हो जाती है, इसलिए आप अपने खान पान में बारिश के साथ साथ जरूर ध्यान रखें कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। और अभी हमें सुनना है एक प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, आज की तेज़ ज़िंदगी में बारिश कहती है कि थोड़ा रुकिए, थोड़ा मुस्कुराइए और अपने लोगों के साथ समय बिताइए। बारिश सिर्फ आसमान से गिरने वाली बूंदें नहीं है, ये उम्मीदें हैं, ये खुशी है, ये सुकून है, ये एक नई शुरुआत है। तो इस मानसून अपनों के साथ थोड़ा समय बिताइए, प्रकृति को सम्मान कीजिए और सुरक्षित रहिए और ज़िंदगी की हर छोटी छोटी खुशियों का आनंद लीजिए।
1: श्रोताओं, अब 9 बज रहे हैं। हम एक न्यूज ब्रेक के लिए रुकेंगे और फिर से लौटेंगे इस कार्यक्रम में 9:10 पर।
2: ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-2025 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। राज्य पुलिस के विशेष यातायात अभियान के तहत पहले 4 दिनों में 78,000 से अधिक वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। और प्रदेश में सक्रिय मॉनसून के कारण विभिन्न स्थानों पर बारिश का दौर जारी, उदयपुर, कोटा, जोधपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान का साक्षी भी बनेंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहां वे प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-2025 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेता विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और छात्रों को पुरस्कार वितरित करेंगे। विद्यार्थियों में संसदीय प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने

करने के लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। ये योजना छात्रों को संसद की कार्यप्रणाली और प्रक्रियाओं, चर्चा और बहस की तकनीकों से भी परिचित कराती है और उनमें आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और प्रभावी भाषण कला तथा कौशल विकसित करती है। 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में देश भर के 51 विश्वविद्यालयों और कॉलेजों ने भाग लिया। देश के जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से हो रही इस दो दिन की कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी शामिल होंगे। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का शुभारंभ किया जाएगा। ये मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं, पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देशभर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों तथा जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में बदलने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। करौली जिले में पांचना बांध से समझौते के अनुसार सिंचाई के लिए नहरों में पानी का प्रवाह कल फिर से शुरू कर दिया गया। इस बीच देर शाम आई तकनीकी खामी के कारण कुछ देर प्रवाह बाधित रहा। हालांकि जल संसाधन विभाग, एसडीआरएफ और विशेषज्ञों की टीमों ने पूरी रात तकनीकी खराबी को दूर कर प्रवाह सुचारू किया। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से आज सुबह जारी बयान के अनुसार तकनीकी समस्या वाले गेट को आज तड़के खोल दिया गया, जिसके बाद नहरों में जल प्रवाह सामान्य हो गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान राजस्थान में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। दोनों नेताओं के बीच राज्य में सड़क अवसंरचना के विस्तार और भविष्य की राजमार्ग परियोजनाओं से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। उधर मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर राजस्थान के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर को राज्य में औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने केंद्रीय व्यय सचिव, राजस्व सचिव और रक्षा सचिव से मुलाकात कर केंद्र प्रायोजित योजनाओं, जीएसटी सुधारों और मेक इन इंडिया से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राज्य पुलिस के विशेष यातायात अभियान के तहत पहले चार दिनों में 78,000 से अधिक वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस यातायात डॉ बीएल मीणा ने बताया कि 2 से 5 जुलाई तक बिना हेलमेट वाहन चलाने, तेज रफ्तार, अवैध पार्किंग और राष्ट्रीय राजमार्गों पर लेन अनुशासन का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर यह कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये विशेष अभियान 16 जुलाई तक पूरे प्रदेश में जारी रहेगा। आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए आमेर में यातायात और पर्यटक सुविधाओं को बेहतर बनाने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कल जयपुर में पर्यटन, पुरातत्व, नगर निगम, यातायात पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में आमेर क्षेत्र में यातायात प्रबंधन, पार्किंग व्यवस्था, पर्यटकों के सुगम आवागमन और आवश्यक नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने पर चर्चा की गई। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं निर्धारित समय सीमा में पूरी कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ काम करें ताकि आमेर आने वाले पर्यटकों को अच्छा अनुभव मिले। नीम का थाना में लगभग 34 करोड़ रुपए की लागत से बनी 100 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक राजकीय मातृ और शिशु अस्पताल का राजस्थान सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर ने लोकार्पण किया।

0: अस्पताल प्रधानमंत्री केयर्स फंड से तैयार किया गया है। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर गोविंद छापोला ने बताया कि इसमें आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, नवजात शिशु गहन देखभाल इकाई, बच्चों के उपचार के लिए अत्याधुनिक उपकरण और वातानुकूलित सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इससे स्थानीय लोगों को सहूलियत होगी।
1: ये जो महिला अस्पताल बना है निमका थाना में, ये बहुत ही सुविधाजनक और अच्छा बना है। कम से कम 100 किलोमीटर दूर तक के जो आएंगे उनको बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। अब जयपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
2: इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छा स्पेस है, तो इस क्षेत्र के लिए ये संस्था बहुत ही बड़ा वरदान साबित होगी।
0: प्रदेश में सक्रिय मॉनसून के कारण विभिन्न स्थानों पर बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 2 सेंटीमीटर बारिश जोधपुर शहर में दर्ज की गई। दौसा, पाली, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, चूरू और सवाईमाधोपुर में कई स्थानों पर हल्की तो कई जगह मध्यम बरसात हुई। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण में हुई बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। बाड़मेर जिले में कल दोपहर बाद अंधड़ के साथ शुरू हुआ बरसात का दौर देर शाम तक जारी रहा। इस दौरान नोखड़ा इलाके में मूसलाधार बारिश हुई। सेड़वा, धनाऊ और चौहटन सहित कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई।
3: जिले में कल तीसरे पहर तेज आंधी आने से आसमान में धूल का गुब्बार छा गया। देखते ही देखते काली घटाएं घिराई और बरसात का दौर शुरू हो गया। जिला मुख्यालय के अलावा सेड़वा, धनाऊ और चौहटन समेत कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई। नोखड़ा इलाके के गांवों में जमकर बादल बरसे। मानसून की पहली बरसात से किसानों में खुशी की लहर है। इस बीच किसान खरीफ की फसलों की बुवाई में लग गए हैं। आज घने बादल छाए हुए हैं और मौसम खुशगवार बना हुआ है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: मौसम विभाग के अनुसार 2-3 दिनों तक उदयपुर और कोटा संभाग के साथ ही पूर्वी राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं अति भारी बरसात की संभावना है। वहीं जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा तथा आज और कल कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। 10 जुलाई से भारी वर्षा की गतिविधियों में कमी आने के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-2025 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। राज्य पुलिस के विशेष यातायात अभियान के तहत पहले 4 दिनों में 78,000 से अधिक वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। और प्रदेश में सक्रिय मॉनसून के कारण विभिन्न स्थानों पर बारिश का दौर जारी। उदयपुर, कोटा, जोधपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: प्रादेशिक समाचारों के बाद आपका फिर से स्वागत है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। और इस कार्यक्रम में हम आज दो साथी, मैं मीता मुल्तानी
5: और मैं आपका साथी हिमांशु अवस्थी, करते हैं आपका स्वागत नई जानकारियों के साथ। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

0: श्रोताओं, इतिहास सिर्फ बीते हुए समय की कहानी नहीं होता, बल्कि वो हमें बताता भी है कि किन घटनाओं ने दुनिया की दिशा और दशा दोनों को बदल दिया। तो आइए जानते हैं 7 जुलाई को इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में।
1: मित्रों, भारतीय सिनेमा के इतिहास में 7 जुलाई का एक खास महत्व है। 1896 में इसी दिन फ्रांस के सिनेमेटोग्राफर ल्यूमेर भाइयों ने भारतीय सिनेमा की नींव रखी थी। इन दोनों ने इस दिन बम्बई, जो अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, के वाटसन होटल में 6 फिल्मों का प्रदर्शन किया था। इन फिल्मों को देखने के लिए टिकट की कीमत तब 1 रुपये रखी गई थी मित्रों, और उस समय के अखबारों ने इसे सदी का चमत्कार बताया था। इस कार्यक्रम को दर्शकों का अपार प्रोत्साहन मिला, जिससे प्रभावित होकर जल्दी कोलकाता और चेन्नई में भी फिल्मों का प्रदर्शन होने लगा और भारतीय फिल्म निर्माण का रास्ता खुला था आज ही के दिन।
0: श्रोताओं, 7 जुलाई 1998 को भारतीय शास्त्रीय संगीत को वैश्विक पहचान दिलाने वाले प्रसिद्ध संगीतकार पंडित विश्वमोहन भट्ट को अमेरिका में प्रतिष्ठित दशाब्दी का सर्वाधिक प्रशंसित व्यक्ति को सम्मान से नवाजा गया था। मोहन वीणा के आविष्कारक के रूप में विख्यात पंडित भट्ट इससे पहले वर्ष 1994 में ग्रैमी अवार्ड भी जीत चुके थे। भारतीय संगीत को विश्व मंच तक पहुंचाने में उनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।
1: श्रोताओं, 1912 में आज ही के दिन अमेरिकी खिलाड़ी जिम थॉर्प ने स्टॉकहोम ओलंपिक में 4 स्वर्ण जीतकर तहलका मचा दिया था।
0: श्रोताओं, 7 जुलाई 1948 को स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई थी। इस परियोजना का उद्देश्य दामोदर नदी में आने वाली बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और क्षेत्र में समग्र विकास को गति देना था। ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं में से एक थी।
1: दोस्तों, वर्ष 1928 में आज ही के दिन यानी 7 जुलाई को स्लाइस्ड ब्रेड की पहली बार बिक्री हुई थी। आज जिसे हम ब्रेड के टुकड़ों के रूप में देखते हैं, इसे मशीन से काटकर उस दिन पहली बार तैयार किया गया था।
0: श्रोताओं, 7 जुलाई 2007 को अमेरिका के डायरेक्ट टीवी 10 संचार उपग्रह को रूस के प्रोटॉन एम रॉकेट के जरिए सफलतापूर्वक

0: अंतरिक्ष में भेजा गया था।
1: साल 1999 में आज ही के दिन फ्रांसीसी वैज्ञानिकों द्वारा पेचिस के नए टीके की खोज की गई थी।
0: श्रोताओं, आज ही के दिन 7 जुलाई 1955 को भारत में पहली बार वन्य प्राणी दिवस मनाया गया था। इसका उद्देश्य वन जीवों के संरक्षण, जैव विविधता के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना था। तो श्रोताओं, ये थी 7 जुलाई के इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्होंने संगीत, विज्ञान, पर्यावरण संरक्षण और देश के विकास में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी थी।

दोस्तों आज मंगलवार है और हर मंगलवार की तरह हम लेकर आए हैं आपका पसंदीदा सेगमेंट आओ जाने खेल। श्रोताओं, इस सेगमेंट में हम आपको दुनिया के ऐसे खेलों से रूबरू करवाते हैं जिनके बारे में सुनकर कभी हैरानी होती है तो कभी चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तो आज बात करते हैं एक ऐसे अनोखे खेल की जिसमें ना बल्ला चलता है, ना गेंद, ना रैकेट और ना ही कोई भारी भरकम उपकरण। इस खेल का मुकाबला होता है पैरों के अंगूठों का। जी हाँ, सुनने में भले ही अजीब लगे लेकिन ये खेल दुनिया भर में अपनी अलग पहचान रखता है। इसका नाम है टो रेसलिंग, यानी पैरों के अंगूठे की कुश्ती। इस अनोखे खेल की विश्व चैंपियन हर साल

0: इंग्लैंड के डर्बीशायर क्षेत्र में आयोजित की जाती है। प्रतियोगिता में दो खिलाड़ी फर्श पर आमने सामने बैठते हैं और अपने पैरों के अंगूठे को एक दूसरे के अंगूठों में फंसाकर मुकाबला शुरू करते हैं। मुकाबले की शुरुआत टोज अवे के ऐलान के साथ होती है।
1: इस खेल में कुल 3 राउंड होते हैं ईश्वरताओं। पहला राउंड दाएं पैर से, दूसरा बाएं पैर से, और यदि जरूरत पड़े तो तीसरा राउंड फिर से दाएं पैर से खेला जाता है। खिलाड़ियों का लक्ष्य होता है अपने प्रतिद्वंद्वी के पैर को ताकत के दम पर एक तय सीमा में, जिसे टो बोर्ड कहा जाता है, तक धकेल कर दबाना। लेकिन इस खेल में सिर्फ ताकत ही नहीं, साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। मुकाबला शुरू होने से पहले रेफरी खिलाड़ियों के पैरों को अच्छी तरह से जांचते हैं ताकि किसी को फंगल इन्फेक्शन या कोई घाव न हो। साथ ही किसी भी तरह की नशीली या उत्तेजक दवाओं का इस्तेमाल इसमें पूरी तरह प्रतिबंधित है। और अब बात इनाम की। हालिया विश्व चैंपियन में पुरुष और महिला दोनों वर्गों के विजेताओं को £5,000 तक की नकद पुरस्कार राशि दी गई, तो इस अनोखे खेल को और भी यह खास बना देता है।
0: तो दोस्तों, दुनिया में खेलों की कोई कमी नहीं है। कुछ खेल हमें रोमांचित करते हैं तो कुछ अपनी अनोखी परंपराओं से हमें हैरान कर देते हैं। टू रेसलिंग भी उन्हीं में से एक है, जो ये साबित करता है कि खेल सिर्फ साधनों से नहीं बल्कि जुनून और परंपरा से बनते हैं। तो इसी रोचक जानकारी के साथ आज के आओ जाने खेल सेगमेंट में बस इतना ही।

0: दोस्तों, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कई ऐसी छोटी छोटी आदतें होती हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही छोटी सी सावधानियां हमें बड़ी मुश्किलों और दुर्घटनाओं से बचा सकती हैं। इसलिए इस सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी आसान और उपयोग बातें जिन्हें अपनाकर आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा का बेहतर ध्यान रख सकते हैं। तो आइए आज की काम की बात जानते हैं। बरसात का मौसम हर किसी की पसंद बनी होती है। ठंडी हवाएं, बारिश की फुहारें और मौसम की ताजगी मन को सुकून देती है, लेकिन इसी मौसम में बिजली से जुड़ी दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए थोड़ी सी सतर्कता जरूरी है।
1: इसलिए दोस्तों एक बात का ध्यान जरूर रखें, गीले हाथों से कभी भी बिजली के किसी स्विच, एक्सटेंशन बोर्ड, चार्जर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ना छुएं। पानी बिजली का अच्छा चालक होता है और आपकी एक छोटी सी लापरवाही करंट लगने जैसी गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है। श्रोताओं, अगर आपके हाथ गीले हैं तो पहले उन्हें अच्छी तरीके से किसी सूखे तौलिया या कपड़े से पोंछ लें। इसके बाद ही स्विच ऑन या ऑफ करें या किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल करें। यदि घर में कहीं बिजली का तार कटा हुआ है, खुला हुआ है या स्पार्किंग कर रहा है तो उसे खुद ठीक करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तुरंत बिजली की सप्लाई बंद कर दें और किसी इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर उसकी मदद ले सकते हैं। साथ ही कोशिश करें कि मोबाइल चार्जर, एक्सटेंशन बोर्ड या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ऐसी जगह रखें जहाँ पर बारिश का पानी या नमी ना पहुँचे। अगर आपके घरों में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें भी गीले हाथों से बिजली के उपकरणों को छूने से मना करें। याद रखिए, दुर्घटनाएं अचानक होती हैं, लेकिन उनसे बचाव पहले से की गई सावधानी से ही संभव है। सिर्फ कुछ सेकंड की सतर्कता आपको और आपके पूरे परिवार को सुरक्षित रख सकती है।

दोस्तों, आज अब अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारी खास बात। और आज की ये खास बात में चर्चा उस परियोजना की, जिसे राजस्थान के औद्योगिक इतिहास का एक बड़ा पड़ाव माना जा रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पचपदरा बालोतरा स्थित HPCL राजस्थान रिफाइनरी को 4 जुलाई को राष्ट्र को समर्पित किया। यह केवल एक रिफाइनरी नहीं, बल्कि राजस्थान के विकास, रोजगार और औद्योगिक भविष्य से जुड़ी एक महत्वपूर्ण परियोजना है। करीब 79,000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित यह देश की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। मित्रों, पहले ये समझते हैं कि ग्रीनफील्ड रिफाइनरी होती क्या है। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी वो होती है जिसे पूरी तरह नई जगह पर शून्य से शुरू करके विकसित किया जाता है। यानी यहाँ पहले से कोई औद्योगिक ढांचा नहीं होता, बल्कि पूरी परियोजना नए सिरे से तैयार की जाती है। पचपदरा की यह रिफाइनरी भी इसी तरह बनाई गई है। इसका निर्माण वर्ष 2018 में शुरू हुआ और अब यह व्यावसायिक उत्पादन के लिए बिल्कुल तैयार अवस्था में है। खास बात यह है कि यह भारत की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है और देश की 24वीं रिफाइनरी भी यह मानी जाती है। अब बात करें

0: की प्रमुख विशेषताओं की तो यह परियोजना लगभग 4,400 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है, जबकि इसका पूरा परिसर करीब 32 किलोमीटर के दायरे में विकसित किया गया है। इसकी वार्षिक क्षमता 90 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल से इसमें रिफाइन किया जा सकता है। इसमें 29 अत्याधुनिक प्रोसेसिंग इकाइयां भी शामिल हैं। साथ ही इसका नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स 17 है, जो इसे भारत की सबसे जटिल और उन्नत रिफाइनरियों में से एक बनाता है।
1: दोस्तों, इस परियोजना का सबसे बड़ा प्रभाव रोजगार और औद्योगिक विकास पर देखने को मिलेगा। अनुमान है कि इससे लगभग 35,000 प्रत्यक्ष और 1 लाख से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इससे बालोतरा, बाड़मेर और आसपास के क्षेत्रों में छोटे उद्योग, परिवहन, लॉजिस्टिक्स, होटल व्यापार और सेवा क्षेत्र को भी गति मिलने की पूरी तरीके से संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि रिफाइनरी राजस्थान को केवल ऊर्जा उत्पादन का केंद्र ही नहीं बल्कि पेट्रोकेमिकल हब के रूप में भी स्थापित करने की क्षमता रखती है। राज्य में निवेश बढ़ेगा, औद्योगिक आधार मजबूत होगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। पश्चिमी राजस्थान, जिसे लंबे समय तक सीमावर्ती और रेगिस्तानी क्षेत्र के रूप में देखा जाता था, अब ऊर्जा और उद्योग के नए केंद्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। यही वजह है कि पचपदरा रिफाइनरी को केवल एक परियोजना नहीं बल्कि राजस्थान के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव के रूप में माना जा रहा है।

दोस्तों, अब वक्त है उस जानकारी के बारे में जिनका आज के दिन जन्म हुआ है, और उसमें हम सबसे पहले याद करते हैं हिंदी साहित्य के प्रख्यात साहित्यकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी को। 20 वर्ष की उम्र के पहले ही उन्हें जयपुर की वैद्यशाला के जीर्णोद्धार तथा उससे संबंधित शोध कार्य के लिए गठित मंडल में चुन लिया गया था, और कैप्टन गैरिट के साथ मिलकर उन्होंने द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स शीर्षक से अंग्रेजी ग्रंथ की रचना

0: की। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की हिंदी साहित्य में सबसे अधिक ख्याति 1915 में सरस्वती मासिक में प्रकाशित कहानी उसने कहा था के कारण हुई। यह कहानी शिल्प और विषय वस्तु की दृष्टि से आज भी मील का पत्थर मानी जाती है।
1: श्रोताओं, बात भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल और लोकप्रिय कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी की, जिनका जन्म 7 जुलाई 1981 को झारखंड के रांची में हुआ था। आज पूरा क्रिकेट जगत एक ऐसे खिलाड़ी को सलाम कर रहा है जिसने भारतीय क्रिकेट की तस्वीर को पूरी तरीके से बदल दिया। रांची जैसे छोटे शहर से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का सफर तय करना आसान नहीं होता, लेकिन धोनी ने यह कर दिखाया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। शुरुआत में उन्होंने

0: कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी की, जिनका जन्म 7 जुलाई 1981 को झारखंड के रांची में हुआ था। आज पूरा क्रिकेट जगत एक ऐसे खिलाड़ी को सलाम कर रहा है जिसने भारतीय क्रिकेट की तस्वीर को पूरी तरीके से बदल दिया। रांची जैसे छोटे शहर से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का सफर तय करना आसान नहीं होता, लेकिन धोनी ने यह कर दिखाया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। शुरुआत में उन्होंने रेलवे में ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर यानी TTE के रूप में भी काम किया, लेकिन क्रिकेट के प्रति जुनून उन्हें मैदान तक खींच लाया। साल 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे से डेब्यू शुरू हुआ उनका अंतर्राष्ट्रीय सफर जल्दी भारतीय क्रिकेट की रीढ़ बन गया। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी, तेज विकेट कीपिंग और शांत दिमाग ने उन्हें अलग पहचान दिला दी। धोनी की कप्तानी भारतीय क्रिकेट इतिहास का स्वर्णिम अध्याय मानी जाती है। उनकी लीडरशिप में भारत ने 2007 का T20 वर्ल्ड कप, 2011 का वनडे वर्ल्ड कप और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती। वो दुनिया के ऐसे इकलौते कप्तान हैं जिन्होंने तीनों बड़े ICC लिमिटेड ओवर टूर्नामेंट अपने नाम किए हैं।
1: धोनी को खेल जगत के सर्वोच्च सम्मानों जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। 2025 में उन्हें प्रतिष्ठित ICC हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया। सूझबूझ भरी कप्तानी, मैदान पर शांत रवैया और किसी भी तरह की जोखिम लेने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले कप्तान धोनी युवाओं में एक आदर्श के रूप में देखे जाते हैं। आज पूरे आकाशवाणी परिवार की तरफ से हम उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं।

0: दोस्तों बात कर लेते हैं फीफा विश्व कप 2026 की। फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 16 मुकाबलों के बाद क्वार्टर फाइनल की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। सबसे बड़ा उलटफेर तब देखने को मिला जब 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील को नॉर्वे ने 2-1 से हराकर पहली बार अंतिम 8 में जगह बना ली। नॉर्वे के इस ऐतिहासिक जीत के हीरो रहे अर्लिंग हालैंड, जिन्होंने 89 और 90 मिनट में 2 शानदार गोल दागे। ब्राजील की ओर से नेमार जूनियर ने इंजरी टाइम में पेनल्टी पर गोल जरूर किया, लेकिन वो टीम को हार से नहीं बचा सका। वहीं स्पेन ने रोमांचक मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल का टिकट कटवा लिया है। मैच का इकलौता और निर्णायक गोल इंजरी टाइम में मिकेल मेरिनो ने किया। इस हार के साथ ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम का विश्व कप अभियान समाप्त हो गया है। एक अन्य मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 के बड़े अंतर से हराकर अंतिम 8 में जगह बना ली है। आज क्वार्टर फाइनल में उसका सामना स्पेन से होगा, जो इस चरण के सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक माना जा रहा है। उधर इंग्लैंड ने मेजबान मैक्सिको को 3-2 से हराकर शानदार अंदाज में क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। दूसरे हाफ में 10 खिलाड़ियों के साथ खेलने के बावजूद इंग्लैंड ने बेहतरीन खेल दिखाया। जूड बेलिंगम, हैरी केन और जेरल क्वांसा के गोलों की बदौलत इंग्लिश टीम ने यादगार जीत दर्ज की और मैक्सिको का घरेलू मैदान पर विश्व कप का सफर समाप्त हो गया।
1: श्रोताओं, कहते हैं कि कुछ लोग अपनी उम्र से नहीं बल्कि अपने साहस और बलिदान से अमर हो जाते हैं। भारत की वीर भूमि ने ऐसे अनेक सपूत दिए हैं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान कर दिया। उन्हीं अमर वीरों में एक नाम है कैप्टन विक्रम बत्रा का। आज 7 जुलाई को उनकी पुण्यतिथि पर पूरा देश उस जांबाज सैनिक को नमन करता है जिसने कारगिल की बर्फीली चोटियों पर दुश्मन को करारा जवाब देते हुए भारत का तिरंगा गर्व से लहराया और अंततः देश की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में जन्मे कैप्टन विक्रम बत्रा बचपन से ही साहसी, अनुशासित और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे। पढ़ाई के दौरान उन्होंने NCC में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और मर्चेंट नेवी में शानदार कैरियर का अवसर मिलने के बावजूद भारतीय सेना को चुना। उनका सपना था देश की सेवा करना और कुछ ऐसा कर दिखाना जिस पर पूरा भारत गर्व करे।
0: श्रोताओं, भारतीय सैन्य अकादमी से प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें 13 जम्मू और कश्मीर राइफल्स में नियुक्त किया गया। वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान उन्हें द्रास सेक्टर के पॉइंट 5140 पर कब्जा करने का दायित्व मिला। अपनी अद्भुत रणनीति और निर्भीक नेतृत्व से उन्होंने इस मिशन को सफल बनाया। विजय के बाद रेडियो पर उनका संदेश था, ये दिल मांगे मोर। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि भारतीय सेना के अदम्य साहस और जज्बे का प्रतीक बन गया। इसके बाद पॉइंट 4875 पर कब्जे के दौरान उन्होंने अपने साथियों का नेतृत्व करते हुए दुश्मन के कई सैनिकों को मार गिराया। घायल होने के बावजूद उन्होंने अपने साथियों की जान बचाने को प्राथमिकता दी और मातृभूमि की रक्षा करते हुए 7 जुलाई 1999 को वीरगति को प्राप्त हुए। कैप्टन विक्रम बत्रा के इस अद्वितीय साहस, नेतृत्व का और सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज भी उनका नाम सुनते ही कारगिल की उन चोटियों पर गूंजता उनका जोशीला नारा याद आता है, ये दिल मांगे मोर। ये नारा आज भी हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की नई ऊर्जा भर देता है।

0: श्रोताओं, आज हम याद करते हैं उस कलाकार को जो हिंदी फिल्मों के गीत संगीत के स्वर्ण युग के सारथी रहे हैं। उनका आज जन्म हुआ और नाम है अनिल बिस्वास। उन्होंने न सिर्फ अपने संगीत से फिल्म संगीत को शास्त्रीय, कलात्मक और मधुर बनाया, बल्कि अनेक गायक गायिकाओं को तराश कर हीरे जवाहरात की तरह प्रस्तुत किया। इनमें तलत महमूद, मुकेश, लता मंगेशकर, सुरैया आदि कई नाम गिनाए जा सकते हैं। अनिल बिस्वास शास्त्रीय संगीत के निष्णात होने के साथ लोक संगीत के अच्छे जानकार थे। उनकी धुनों में जो संगीत है वह अब हमारी विरासत बन गया है। दिल जलता है तो जलने दे से ऐसे कई अनेक हिट गीत उन्होंने दिए। और उसके बाद आज हम याद करते हैं पुण्यतिथि के अवसर पर उस महान कलाकार को जो अपने दौर के बेहतरीन अभिनेता माने जाते हैं और हम उन्हें कहते हैं ट्रेजेडी किंग।
1: दोस्तों, पर्दे पर आने वाले कलाकार सिर्फ किरदार नहीं निभाते, वो हमारी यादों का हिस्सा बन जाते हैं। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर एक पूरा दौर आंखों के सामने जीवंत हो उठता है। उनकी मुस्कान, उनकी आवाज़, उनकी अदाकारी और उनके संवाद समय बीतने के बाद भी दिलों में उसी तरह बसे रहते हैं। 7 जुलाई का दिन भारतीय फिल्म जगत के लिए भावुक कर देने वाला दिन है। इसी दिन वर्ष 2021 में हिंदी सिनेमा की ट्रेजेडी किंग कहे जाने वाले दिलीप कुमार ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। वो चले गए, लेकिन अपने पीछे अभिनय की एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो आने वाली हर पीढ़ी को प्रेरणा देती रहेगी।

देवदास, मुगले आजम, नया दौर, मधुमती, गंगा जमुना, कोहिनूर, राम और श्याम और शक्ति जैसी कालजयी फिल्मों में उनका अभिनय आज भी उतना ही प्रभावशाली लगता है जितना दशकों पहले था। दर्द से भरे किरदारों में उन्होंने जिस संवेदनशीलता से पर्दे पर उतारा, उसी ने उन्हें ट्रेजेडी किंग का अमर खिताब दिलवा दिया।

अपने जीवन काल में दिलीप कुमार कुल 8 बार फिल्म फेयर से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार पा चुके हैं और यह एक कीर्तिमान है जिसे अभी तक नहीं तोड़ा जा सका है। अंतिम बार उन्हें सन 1982 में फिल्म शक्ति के लिए यह पुरस्कार दिया गया, जबकि फिल्म फेयर ने उन्हें 1993 में राज कपूर की स्मृति में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया।

0: दोस्तों, जिंदगी हमें हर दिन एक कोरा पन्ना देती है, उस पर कैसी कहानी लिखनी है ये फैसला हमारे हाथ में होता है। इसलिए हर नए दिन को एक नए अवसर की तरह अपनाइए, अपने सपनों पर विश्वास रखिए और पूरी लगन के साथ आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं प्रेरणादायक विचारों के साथ आज के कार्यक्रम में मुझे यानी हिमांशु अवस्थी और मेरे साथ
1: मीता मुल्तानी को इजाजत दीजिए।
0: नमस्कार।

नमस्कार, कार्यक्रम सुन रहे थे आप। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम लोक संगीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: लोक संगीत की इस कड़ी में पेश है ये अगला गीत बंदूक हां लंगा पार्टी का गाया हुआ।

लोक संगीत का कार्यक्रम सुन रहे थे आप। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। इस समय अब आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम सुगम संगीत।

रेखा भारद्वाज की गाई हुई इस रचना के साथ ही सुगम संगीत का ये प्रोग्राम अभी यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, दिन के ठीक 11 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं अगला प्रोग्राम, फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में ये पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म खुद्दार से, जिसे गाया है कुमार शानू और अलका याग्निक ने। गीत के बोल राहत इंदौरी के हैं और संगीत अनु मलिक का।

श्रोताओं, फिल्म संगीत में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म चमत्कार से, जिसे गाए हैं कुमार शानू और अलका याग्निक ने। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं।

संगीत में आइए, अब ये अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म चाहत से, जिसे गाया है कुमार शानू ने, गीत को लिखा निदा फाजली ने और संगीतबद्ध किया अनु मलिक ने।

चमक फूलों में रंगत ना रहेगी। अरे कुछ भी ना रहेगा अगर मोहब्बत ना रहेगी।

हाय हमें यूं देखना, ऐसा ना हो बदनाम हो जाए, ये मुमकिन है इसी का कल मोहब्बत नाम हो जाए।

श्रोताओं, अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कुछ कुछ होता है से, जिसे गाए हैं उदित नारायण, अलका याग्निक और मनप्रीत अख्तर ने। गीत के बोल समीर के हैं और संगीत जतिन ललित का।

श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए अब ये गीत सुनते हैं फिल्म राजा हिंदुस्तानी से, जिसे गाए हैं कुमार शानू और अलका याग्निक ने। गीत के बोल समीर ने लिखे हैं और संगीतबद्ध किया नदीम श्रवण ने।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, आप आकाशवाणी जोधपुर से सुन रहे हैं प्रोग्राम फिल्म संगीत। आइए फिल्म संगीत में ये गीत सुनते हैं, फिल्म नाम से। इस गीत को गाया है पंकज उदास ने, गीत को लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत का जादू बिखेरा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए। अब ये गीत जो है वो हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मोहब्बतें से। इस गीत को गाया है उद्भव, मनोहर सेठी और ईशान ने। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया जतिन ललित ने।

श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए। ये आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म रिफ्यूजी से, जिसे गाया है सोनू निगम और अलका याग्निक ने। गीत के बोल जावेद अख्तर के हैं और संगीत अनु मलिक का।

श्रोताओं, इस फिल्मी गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के ठीक 12 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं अगला प्रोग्राम, लोक संगीत। श्रोताओं, लोक संगीत में ये पहला लोक रंग हम आपको सुनवा रहे हैं, रीचा शर्मा का गाया हुआ।

श्रोताओं, ये लोक रंग सुना आपने अभी कविता शर्मा का गाया हुआ। लीजिए अगली पेशकश इस कार्यक्रम में लीला भाटी की आवाज़ में।

इस लोक रचना के साथ ही श्रोताओं सुगम संगीत का ये प्रोग्राम अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है हमारी अगली पेशकश सुगम संगीत। सुगम संगीत में श्रोताओं ये पहली रचना हम आपको सुनवा रहे हैं पंकज उदास की गाई हुई।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान का

0: कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, सुगम संगीत में अगली रचना हम आपको सुनवा रहे हैं, चंदन दास की गाई हुई।

0: जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 1 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हमारे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी किया। इसके बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी ने दोनों देशों की संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि दोनों देश हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा।
2: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
1: देश की जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से आयोजित इस 2 दिन की कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। ये मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं, पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देशभर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों तथा जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में बदलने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में देशभर में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि ये योजनाएं देश में आधुनिक और बेहतर परिवहन व्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। श्री गडकरी ने कहा कि इनसे रोजगार और व्यापार के नए अवसर बढ़ेंगे, सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास होगा और देश की माल परिवहन व्यवस्था अधिक मजबूत होगी। जयपुर के श्यामनगर थाना क्षेत्र में आज सुबह 200 फीट बाईपास पर तेज रफ्तार ट्रक के फुटपाथ पर चढ़ने से वहां खड़े 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एजेंसी के अनुसार तेज रफ्तार ट्रक पहले सड़क किनारे लगी लोहे की रेलिंग तोड़ते हुए फुटपाथ पर चढ़ गया और वहां खड़े लोगों को चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही श्यामनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। गंभीर रूप से घायल दोनों लोगों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका उपचार चल रहा है। हादसे के बाद कुछ देर तक यातायात प्रभावित रहा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रदेश में सक्रिय मॉनसून के कारण अधिकांश जिलों में बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तो कहीं भारी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा 9 सेंटीमीटर बारिश जालौर के जसवंतपुरा में दर्ज की गई। जोधपुर के डांगियावास क्षेत्र में तेज बारिश के बाद हाईवे पर पानी भर गया जबकि जालौर के भादराजुन क्षेत्र में पहाड़ियों से झरने बहने लगे। मौसम विभाग के अनुसार पाली जिले के देसूरी में 8 सेंटीमीटर, जोधपुर के झवर में 5 सेंटीमीटर बारिश हुई। सीकर, झुंझुनू, प्रतापगढ़ और राजसमंद में भी 2 इंच तक बारिश हुई जबकि दौसा, सिरोही, बांसवाड़ा, उदयपुर, अलवर

0: सहित कई जिलों में हल्की से मध्यम बरसात दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज 7 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि जैसलमेर को छोड़कर शेष सभी जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, दोपहर के 1:05 हुए हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं किसान साथियों का अपना कार्यक्रम कृषि जगत। आज कार्यक्रम में आप सुनेंगे भेंट वार्ता धीरज सिंह, प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख एकीकृत कृषि प्रणाली विभाग काजरी जोधपुर से दिनेश राणेजा की बातचीत। विषय है शुष्क फल, बागवानी द्वारा मृदा एवं जल संरक्षण तथा किसानों की आय संवर्धन। प्रस्तुति राजेश लामरोड की है।

0: कृषि जगत प्रोग्राम सुन वाला सगला किसान भाइयों ने दिनेश राणे जरा घने मानसू राम राम और नमस्कार सा। आज आपने जानकारी दी रहा शुष्क फल बागवानी द्वारा मृदा एवं जल संरक्षण तथा किसानों की आय संवर्धन कार्यक्रम में पधारिया है डॉक्टर धीरज सिंह, आप प्रधान वैज्ञानिक है, साथ ही आप अध्यक्ष हैं एकीकृत कृषि प्रणाली विभाग काजरी जोधपुर में। राम राम सा।
1: राम राम सा।
0: के करो सा?
1: मजे में।
0: खास तौर से धोरा धरती रो प्रदेश है तो अट खेती बाड़ी थोड़ी दूरी हुए किसान भाई तो आज को शुष्क फल बागवानी है वो कहीं हुआ करे किसान वास्ते वो क्यों महत्वपूर्ण है?
1: शुष्क क्षेत्र बागवानी सटीक प्रणाली है, खास तौर पे उन क्षेत्रों में जहां बरसात बहुत सीमित मात्रा में होती है, जहां संसाधनों का अभाव होता है, भूमि जल भी अत्यंत कम होता है, ऐसे क्षेत्रों में हम उन फलदार फसलों का चयन करते हैं। किसानों को बहुत अच्छी आय देता है, फल देता है, पोषण देता है, तो ये पश्चिमी राजस्थान के लिए एक बड़ी ही सहायक प्रणाली है जो मुख्य खेती के साथ साथ सहायक फसल के रूप में किसानों के लिए एक अत्यंत आकर्षण का केंद्र बनती जा रही है।
0: और खास तौर से अपन 18 जी का किसान है, वे बारानी खेती जी की है करिया करे सगला सु पहली बात आवे के खेती उठी जापा कर सका के जटे या तो पानी री व्यवस्था वे और साथे जी की मिट्टी है वह अच्छी बनी रहे। तो शुष्क फल जी का बागवानी री खेती किसान भाई करनी चाहे तो मृदा संरक्षण में मैंने किन तरह सहायक है?
1: पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से दो मुख्य समस्याएं हैं, एक तो पानी की सीमित उपलब्धता और दूसरा यहाँ जो आंधियां चलती हैं, यहाँ जो हवा चलती है वो अपने साथ साथ जो आपके भूमि के कण है उसको साथ लेके उड़ती है, तो इसको हम वैज्ञानिक शब्दावली में भूमि क्षरण कहते हैं। तो जहां तक हमारे जो शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों के फलदार वृक्ष हैं, इनमें खास बात ये होती है कि इनका जो जड़ तंत्र होता है बड़ा फैला हुआ होता है, दूर दूर तक फैलता है और इन जड़ों में वो क्षमता होती है कि ये भूमि को बांध के रखते हैं। फल वृक्ष जैसे कि आपका बेर हुआ, आपका जामुन हुआ, कैर हुआ, खेजड़ी हुआ, इनकी जड़ें तो आपके 60-60 मीटर तक पाई गई हैं।
0: हाँ, उंडी जावे सा।
1: बहुत ज्यादा गहरी जाती हैं और इस तरीके से ये खेत में एक तरह का जाल बना देते हैं, खेत में आपका भूमि को संरक्षित करते हैं, जल को संरक्षित करते हैं तथा आपकी भूमि को अत्यंत जरूरी तत्व भी प्रदान करते हैं, तो इसलिए इनका एक रोल ये है। दूसरा रोल इनका ये है कि खास तौर पे मानसून जब भारत इस पश्चिमी राजस्थान में बरसात होती है
0: हाँ?
1: तो ये अपनी पत्तियों के माध्यम से भूमि को ढककर रखते हैं और जो वर्षा की जो जल गिरती है पहले इनकी पत्तियों पे गिरती है और फिर धीरे धीरे सरकते सरकते टपकते टपकते नीचे जमीन में जाती है, तो ये जो आपका सीधा संपर्क होता है वर्षा की बूंदों का भूमि से उससे बचाते हैं, भूमि का क्षरण पानी का क्षरण भी रोकते हैं और ये इस तरह की एक व्यवस्था लागू करते हैं जिसके माध्यम से भूमि आपकी जितनी भी बरसात की बूंदे जा रही हैं वो सारी की सारी आपकी जमीन में चली जाती हैं और ये एक तरह से आपका भंडारण का काम करती हैं, स्टोरेज सिस्टम का काम करती हैं।
0: बहुत ही गहरी बातें धीर सिंह जी आप बताई हो और खेती बाड़ी किसान भाई करी जे और किसान भाई ने भी ठा है की जटे खेलडिया वे और जटे बोलडिया वे निशा तो वोटे बाजरी हिट्टा भी बहुत ऊंचा जावे जिकी भी पैदावार किसान भाई फसल लेवे चाहे मूंग लेवो चाहे मोट लेवो तो बम्फर जिकी फसली पैदावार है वह अन खेलिया नीचे और जो आप भात भात जी का रोकड़ा बताया हो तो वह

0: वह उन जो को कारण है जो आप बात बतायो जल संरक्षण जो है वो ज्यादा हुए और साथ है मिट्टी में पौष्टिकता भी होवे। किसान भाई खेती बाड़ी साथ साथ है एजी का शुष्क फल राजी का रूकड़ा वगैरह लगावनी चाहे तो उन महीने किन तरह आय बढ़ाने में मदद कर सके।
1: किसान भाइयों की आय बढ़ाने में अगर मैं पश्चिमी राजस्थान की बात करता हूँ तो फलों का बहुत बहुत ज्यादा योगदान है। किसान भाई अगर फल वृक्षों को अपने खेत में अपनी आवश्यकता के अनुसार लगा लेता है तो मैं ये कहूंगा इसके दो तरीके हैं, या तो वो अपने खेत के मेड़ पे या खेत के चारों तरफ इनको लगा सकता है, और अगर किसान वैज्ञानिक रूप से खेती कर रहा है खेत के मध्य अपनी कतारबद्ध कतार करके इनको लगा सकता है और कतारों की दूरी अपनी फसल के अनुसार निर्धारित कर सकता है। खास तौर पे मैं पश्चिमी राजस्थान की बात करूं, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, तो मैं ये कहूंगा किसानों के लिए सबसे अच्छी दूरी 6 से 8 मीटर की है, उसमें वो सभी तरह के शुष्क फलों का समावेश कर सकता है, जिसमें बेर हो गया, नींबू हो गया, फालसा हो गया, जामुन हो गया, इमली हो गया, करौंदा हो गया या अनार हो गया। तो किसान को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता रहती है कि वो बीच में अपनी जो भी अपने सीजन की फसल है उसको ले सकता है, इसमें ट्रैक्टर आसानी से घूम फिर सकता है, वो आपकी आड़त कर सकता है, वो आपके डिस्क हैरो हो चाहे आपके कल्टी हो वो आराम से अपना काम करेगा। और चूंकि हम इतनी दूरी रख रहे हैं तो फल वृक्षों की जड़ों को भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो ये आम के आम और गुठलियों के दाम इस कहावत को चरितार्थ करता है, अगर आप अपनी फसलों के साथ फल वृक्षों को समाहित करते हैं तो।
0: धीर सिंह जी आप बहुत ही बढ़िया बढ़िया बता रहे हो और मारो भी मन करे कि और गहरा गहरा जी का प्रश्न है वह मैं आपसे पूछूं। और जो आप बात बताए कि भाई एक साथ जी को पर्यावरण है वो भी अपनो अच्छो बन जावे, खेत अच्छा बन जावे, और हमें जो आप बता बते सा तो किसान भाइयों भी मन हुई गयो कि वे आपने खेतर महीने जी का शुष्क बागवानी रा रोकड़ा लगावे, तो आपने विभाग रे कनिशू कहीं छोटा मोटा रोकड़ा जी का है वे दीरी जाए।
1: काजरी विगत 20 वर्षों से किसानों की सेवा में समर्पित है और हमारे यहाँ की जो नर्सरी है, पौधशाला है, उसमें हम जुलाई से किसान भाइयों के काम में आने वाले सभी फलदार तथा वानिकी पौधों का वितरण करते हैं और हम बड़ी ही रियायती दर पे उनका वितरण करते हैं। हमारे यहाँ जो भी पौधे मिलते हैं मुख्य रूप से उसमें खेजड़ी हुआ, अनार हुआ, जामुन हुआ, गोंदा या लिसोड़ा हुआ, इसके अलावा नींबू हुआ, केर हुआ, और इसके अलावा भांति भांति के जो अन्य औषधिक पौधे हैं जैसे नीम हो गया, अर्जुन हो गया, एलोवेरा हो गया, गिलोय हो गया, इसका भी हम वितरण किसान भाइयों को करते हैं।
0: ज्यादा से ज्यादा जी का व्यवसायिक जी का रूकड़ा है खेती बाड़ी के साथ साथ किसान भाई खेती भी करे और साथ जी का पादप है लगाव करे, तो जो आप बात बताई आम के आम और गुटलियों के दाम दोरो लाभ हो जावे। एक दाणी किसान भाई खेत में रुकाली भी कर ले, खेती भी हो जा और साथ आ चीज भी हो जा। हमें बात यूं आवे के खास तौर से अपन जो को आथनो राजस्थान है खेजड़ी ने अपा जो को बढ़ावा दे रही हाँ, तो वो की कर दे सका कहीं महत्व है।
1: देखिए राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी। खेजड़ी वो वृक्ष है जिसकी शहादत हम किसान भाइयों और जनमानस से सुनते हैं। खेजड़ी पे दोहे, ग्रंथ, किताबें तथा लोकगीत लिखे जाते हैं। वास्तव में अगर हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें और खेती की बात करें तो बिना खेजड़ी के ये बात कहनी असंभव होगी कि यहाँ कोई खेती होती है। आज अगर हम राजस्थान की बात करें, आप देखिए कि हर एक किसान के खेत पे, चाहे वो 1 बीघा का हो, 2 बीघा का हो या 10 बीघा का हो, आपको 10 से लेकर 100 खेजड़ी आराम से मिलती है। तो खेजड़ी का उपयोग आपके इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि खेजड़ी के नीचे होने वाली फसलें आपके खेत में अन्य फसलों से ज्यादा ताकतवर, ज्यादा पौष्टिक तथा ज्यादा उपज देने वाली होती हैं। ये पौधा आपके पशुओं को चारा देता है, किसान भाइयों को लकड़ी प्रदान करता है, इसकी फलियां पशु पक्षी भी बड़े चाव से खाते हैं, और अगर हम बाजार भाव करें तो इसका 200 से लेकर 400 रुपये फ्रेश यानी कि ताजा फलियों का भाव मिलता है। और इन्हीं फलियों को अगर किसान भाई सुखा लें तो 1000 से लेकर 1600 रुपये प्रति किलो तक साल भर इसको इसका भाव मिलता है।
0: सही कह सा पचकुटारी जी की सब्जी है वह भणे केर हांगरिया कुमटिया बीजा है क्या वह है के वो अपने आथुने राजस्थान रो मेवो है बादाम काजू ने भी लारे राख्या करे। डॉक्टर धीरे सिंह जी कहीं आप खेती बाड़ी और बागवानी एक साथ कर सका।
1: देखिए, खेती और बागवानी वास्तव में एक दूसरे के पूरक हैं, और किसान भाइयों को अगर खेती को लाभदायक बनाना है तो इन दोनों प्रणालियों का एकीकृत करना, इनका समावित करना बहुत जरूरी हो जाता है। और आज किसान भाई इस बात को जान रहे हैं, समझ रहे हैं और बड़े पैमाने पर फल वृक्षों का अपने खेतों में रोपण कर रहे हैं।

0: के बीच में चाहे खेत की बाउंड्री पे वो इसका प्लांटेशन कर रहे हैं। इससे होने वाली अतिरिक्त आय किसानों के लिए बड़े आकर्षण का केंद्र है। फल वृक्ष उसको रोजगार भी प्रदान करता है और अतिरिक्त आय भी देता है, पशुओं के लिए चारा देता है और घर में पौष्टिकता तथा जो आप आजकल स्वाद और न्यूट्रिशन की बात करते हैं उसका भी पूर्ण रूप से ध्यान रख।
1: ठीक सा ठीक, धन्यवाद डॉक्टर धीर सिंह जी, आप पधारिया और शुष्क फल बागवानी द्वारा मृदा एवं जल संरक्षण तथा किसानों की आय संवर्धन विषय माते जानकारी दे रही, इन वास्ते आपने धन्यवाद और राम राम सा।
0: धन्यवाद सर।
1: कृषि जगत कार्यक्रम रो टेम पूरा वेरियो है, दिनेश राणे जाने सीख दे रहा हूँ, राम राम।
2: किसान साथी अभी सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत में भेंट वार्ता, धीरज सिंह, प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख एकीकृत कृषि प्रणाली विभाग काजरी जोधपुर से दिनेश राणेजा की बातचीत। विषय था शुष्क फल बागवानी द्वारा मृदा एवं जल संरक्षण तथा किसानों की आय संवर्धन, प्रस्तुति राजेश लामरोड की थी। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी और FM सन सिटी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है आधी आबादी नारी शक्ति को समर्पित कार्यक्रम नारी वाटिका।

0: सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर।
1: चलना भी जरूरी होता है मंजिल को पाने के लिए।
0: जी हाँ सखियों, जिंदगी की राहों में से एक और मुलाकात चुरा कर आज फिर से आपसे रूबरू हैं हम आपकी दो प्यारी सखियाँ।
1: मैं हूँ आपकी रेडियो सखी आशा अडवाणी। तो सखियों, एक और प्यारी सखी मेरे साथ बैठी है, हंसती मुस्कुराती समीना। तो सखियों को और समीना जी आपको भी स्नेह और सम्मान भरा नमस्कार।
0: आशा जी आपको भी नमस्कार और हमारी सखियों को भी बहुत ही प्यार भरा नमस्कार।

0: सखियों, हमारी आज की ये जो नारी वाटिका है ये बेहद खास होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं घर के उन चिरागों की, उन परिंदों की जो अब धीरे धीरे अपने परों को तान रहे हैं, ऊंची उड़ान भरने को तैयार हो रहे हैं। जी हाँ, आज बात होगी हमारे युवा होते बच्चों की, उनके करियर के अंतहीन आसमान की और उस हॉस्टल लाइफ की जो उन्हें कच्चे घड़े से एक मजबूत फौलाद बना देता है।
1: बिल्कुल समीना, बचपन की वो उंगली पकड़कर चलने वाले दिन कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता, और देखते ही देखते एक दिन ये बच्चे जिंदगी के उस चौराहे पर आके खड़े हो जाते हैं जहाँ एक तरफ सपनों की उड़ान होती है तो दूसरी तरफ अपनों को पीछे छोड़ आगे बढ़ने की कश्मकश। करियर का चुनाव करना सिर्फ एक प्रोफेशन चुनना नहीं है बल्कि अपनी एक अलग पहचान गढ़ना है।
0: बिल्कुल आशा, और जब यही बच्चे अपने सुनहरे भविष्य के लिए घर की चौखट पार कर हॉस्टल की दुनिया में कदम रखते हैं तो यकीन मानिए ये सिर्फ एक कमरे में शिफ्ट नहीं होते बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हैं, और सारी चीज़ें उनको कैसे खुद ब खुद करना आनी चाहिए ये सारी चीज़ें वो सीखते भी हैं। तभी तो किसी ने बड़े ही खूबसूरती से लिखा है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते
1: क्या
0: हैं।
1: बात है, क्या बात है। तो मेरी प्यारी बहनों, सुनने वालों, अगर आपका बच्चा भी इस वक्त करियर के कश्मकश में है या घर से दूर किसी हॉस्टल में अपने सपनों को सींच रहा है तो आज का ये शो सीधा आपके लिए है और बिल्कुल आपके दिल को छुएगा। आज हम साझा करेंगे उनकी उलझने, उनके करियर ऑप्शंस और हॉस्टल लाइफ के वो खट्टे मीठे अनुभव जो उन्हें कल का लीडर बनाएंगे।
0: तो चलिए उड़ने देते हैं ख्वाबों के परिंदों को।

0: आशा, ऐसा होता है ना कि तेज़ आवाज़ में टैपिंग की आवाज़ से शांत सुबह की शांति जो है वो भंग हो जाती है। और एक नन्ही सी बच्ची रसोई के काउंटर के पास रखी कुर्सी पर खड़ी होकर काल्पनिक कंप्यूटर टैब पर करने का नाटक कर रही होती है ना, और बीच बीच में कागज़ के एक टुकड़े पर कुछ लिख रही होती है और वो काम करने का नाटक कर रही है, जबकि माँ कुछ ईमेल निपटाने की कोशिश कर रही है।
1: बिल्कुल इसी तरह और भी हमने बच्चों को देखा होगा, उसके भविष्य के सभी जो संभावित करियर के बारे में वो सपने देखते हैं। हो सकता है कि चांद से प्यार करने वाला बच्चा ज्योतिष बने, और किचन में बेकिंग में मदद करने वाला पेस्ट्री शेफ। और कई बार हम देखते हैं कि बच्चे खेल खेल में टीचर बन जाते हैं,
0: हाँ,
1: है ना, और बच्चों को दूसरे जो छोटे बच्चे उनको पढ़ाते हैं, या कभी ग्रुप के अंदर लीडरशिप उनको करते हुए देखते हैं, वो समस्याओं को सुलझाते हैं। तो जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो संभावनाएं अनंत लगती है, लेकिन अपने बच्चों की करियर विकल्पों के बारे में सोचना जितना मज़ेदार है ना समीना, उतना ही ज़रूरी है कि हम इस बात का भी ख्याल रखें कि जो पेरेंट्स हैं और जो देखभाल करने वाले के रूप में हम उनके सपनों पर कितना प्रभाव डालते हैं।
0: बिल्कुल यही बात है। और इसमें ऐसा होता है कि जब बच्चा 8वीं या 9वीं या 11वीं 12वीं में पहुंचता है तो घर

0: माहौल है ना, कई बार ऐसा लगता है कि वॉर रूम जैसा हो जाता है। हर तरफ बस एक ही चर्चा होती है, कोचिंग, कॉलेज, मार्क्स और करियर। और हर रात माता पिता के दिल में एक कश्मकश चलती है कि कहीं मैं बच्चे पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव तो नहीं डाल रहा, या फिर कहीं मैं उसे गाइड करने में कमी तो नहीं छोड़ रहा कि
1: दुविधा बिल्कुल लाजमी है समीना। आप बच्चे को सुरक्षित भविष्य चाहते हैं आप उसका, लेकिन जरा सोचिए, क्या करियर का चुनाव सिर्फ आपके जो बच्चे के अच्छे मार्क्स हैं, ट्रेनिंग कोर्सेज हैं या सेफ सरकारी नौकरी तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं।
0: बिल्कुल नहीं,
1: असली करियर वो है जो बच्चे की स्वाभाविक खूबियों और इंटरेस्ट से मेल खाए।
0: बिल्कुल। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे प्रोग्राम में उन जादुई सवालों की जो हर माता-पिता को अपने बच्चे से या खुद से जरूर पूछने चाहिए, ताकि आप उन्हें सही दिशा दिखा सके। और हाँ, अगर आप इन जादुई सवालों को नोट करना चाहते हैं तो हमारी सखियां बिल्कुल नोट डाउन कर सकती हैं, क्योंकि वो भी किसी ना किसी कश्मकश में होंगी या उनको भी कहीं ना कहीं रास्ता मिल जाएगा।
1: तो बच्चे की रुचि और समस्या सुलझाने का अंदाज क्या है? ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिसे करते हुए आपका बच्चा समय भूल जाता है? चाहे फिर वो घंटों रोबोटिक्स किट से खेलना हो या दोस्तों के साथ मिलकर स्कूल का कोई इवेंट प्लान करना हो, ये पल बताते हैं कि बच्चे को अंदर से ऊर्जा कहाँ से मिल रही है।
0: बिल्कुल। और दूसरा सवाल ये हो सकता है कि बेटा बड़े होकर तुम क्या बनोगे, है ना? इसकी जगह आप ये पूछिए कि तुम्हें किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करना अच्छा लगता है, तुम्हें किस गैजेट को ठीक करना अच्छा लगता है, या दोस्तों के बीच का झगड़ा अगर आपका बच्चा अच्छे तरीके से सुलझा सकता है, क्योंकि हर जॉब असल में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना आता है तो वह अपनी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता है, और वो अपने से भी ये सवाल करेगा कि मैं ऐसा हूं तो क्यों हूं।

0: तो आशा जी, हम बात कर रहे हैं कि बच्चों का करियर चुनाव में बहुत सारी कशमकश होती है, बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी। तो पेरेंट्स के लिए शायद स्टेबिलिटी और अच्छी सैलरी जो है वो सफलता की परिभाषा में आ सकता है, या किसी बच्चे को भी ऐसा लग सकता है। लेकिन हो सकता है किसी बच्चे के लिए इसका मतलब क्रिएटिव फ्रीडम या कुछ अलग करने का जज्बा हो, है ना, उसकी सोच कुछ अलग हो। इसके साथ ही आप अपने बच्चे से ये पूछिए कि वो किसे अपना आइडियल या रोल मॉडल मानता है और क्यों मानता है। अगर वो किसी क्रिकेटर या यूट्यूबर का फैन है तो सिर्फ उसकी शोहरत ही नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी मेहनत और क्रिएटिविटी के बारे में उसका दिल कैसे उसको पसंद करता है, ये सवाल भी आप अपने बच्चों से पूछ सकते हैं।
1: और इसके साथ साथ बच्चों के व्यवहार को समझिए कि वो किस माहौल में बेहतर परफॉर्म करता है। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि एकदम सेट रूल्स और फिक्स्ड रूटीन में चमकते हैं, तो कुछ को खुला आसमान और नए एक्सपेरिमेंट्स पसंद होते हैं। याद रखिए, कैक्टस और कमल दोनों खूबसूरत है, पर दोनों का माहौल अलग होता है।
0: बिल्कुल।
1: और सबसे बड़ी बात जो समीना आती है, वो यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूँगी, इस बात को मैं डबल अंडरलाइन करना चाहूँगी कि फेलियर या आलोचना का सामना आज के समय में सबसे बड़ी बात है। और फेलियर और आलोचना का सामना आपका बच्चा कैसे करता है, क्योंकि करियर का रास्ता सीधा सड़क नहीं होता है, उसमें बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स आते हैं। तो मुश्किल वक्त में वो अपनी कौन सी ताकत का इस्तेमाल करता है, रचनात्मकता का या अपनों के साथ का, और उस साथ का या रचनात्मकता को वो यूज़ करके अपनी मुश्किल से बाहर निकलता है या डिप्रेशन में चला जाता है। तो यहाँ माँ बाप को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है और बच्चों को भी कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है। और अगर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चंस की, तो उससे पूछें कि अगर दुनिया में पैसों की कोई चिंता ना हो तो फिर तुम क्या करोगे। इस सवाल को मजाक में मत उड़ाइए। अगर वो कहे कि मुझे दुनिया घूमकर वीडियो बनाना है, तो उसके पीछे छुपे रोमांच और उसके स्टोरी टेलिंग के हुनर को, या फिर उसके वीडियोग्राफी के हुनर को पहचानिए। रिस्क यानी जोखिम के बारे में उसकी क्या राय है? अगर वो अनिश्चितता और स्टार्टअप के रोमांच के लिए तैयार हो जाता है, या फिर उसे बैंकिंग और सरकारी सेवाओं जैसी स्थिरता पसंद है, तो दोनों ही जो रास्ते हैं वो अपनी अपनी जगह करियर चुनने के लिए बेस्ट ऑप्शंस हैं।
1: और एक्सपर्ट टिप ये है कि आपका बच्चा किस बात के लिए लोगों से थैंक यू सुनना चाहता है, दूसरों की मदद के लिए या कुछ नया क्रिएट करने के लिए या मोटिवेट करने के लिए। यही सबसे बड़ी उसकी गहरी प्रेरणा है जो उसको आगे बढ़ाते हैं। और समीना, देखो, माता पिता के रूप में हर माता पिता अक्सर वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं,
0: बिल्कुल
1: इसलिए अंदाज़ा मत लगाइए, उनकी इन शक्तियों को पहचानिए। जब करियर का फैसला बच्चे की कमियों को सुधारने के बजाय उनकी जो खूबियों को बढ़ाने में, उनकी खूबियों को निखारने में किया जाता है, तो मंजिल तक का सफर बोझ नहीं, एक खूबसूरत सफर बन जाता है।
0: बिल्कुल। जब अगली बार अगर आपको ऐसा लगे कि आपका किशोर या किशोरी खुद को खोया हुआ या परेशान महसूस करें, तो उसे कोई सुरक्षित करियर विकल्प सुझाने की जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। इसके बजाय आराम से बैठें, शायद चाय पीते हुए या कुछ बातें करते हुए या किसी शांत यात्रा के दौरान। इन 10 सवालों में से अगर कुछ सवाल या एक सवाल आपने पूछा, और कभी-कभी सही सवाल जब पूछते हैं ना हम, तो निर्णय लेने में वो जो सवाल होते हैं वो मार्गदर्शन ही नहीं करते, बल्कि उसके लिए बिल्कुल सटीक भी बैठ जाते हैं। तो ये आपके बच्चे की खूबियों को उजागर करते हैं और उन्हें और आपको दिखाते हैं कि करियर को उनकी वास्तविक खूबियों के रूप में बनाया गया है, तो उसके लिए क्या-क्या संभव है और उसके लिए आने वाले

0: भविष्य के लिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं।
1: क्योंकि ऑप्शंस जब भी आपको मिलेंगे तब आप उस पर गहराई से विचार करेंगे, सोचेंगे, बच्चे के अंदर से कुछ निकालेंगे, क्योंकि बच्चे का मन कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुद्धू होता है।

0: चाहे कितना भी बुद्धू सा मन हो, कहीं ना कहीं उसको अपने दिमाग की टेक्नोलॉजी के साथ में आगे बढ़ना ही पड़ेगा बच्चे को। और उसको कहीं ना कहीं 12th के बाद में या ग्रेजुएशन के बाद में, या फिर यही कहें कि 12th के बाद में या 12th से पहले, आजकल तो 10th के बाद में ही बच्चों को कुछ स्ट्रीम्स को चुनना पड़ता है। तो साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों ही स्ट्रीम आज के समय में बेहतरीन और नए ज़माने के उनमें तीनों ही स्ट्रीम्स में नए करियर ऑप्शंस बहुत सारे मौजूद हैं। जहां आप पारंपरिक ढर्रे जैसे कि सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर या बैंक क्लर्क से हटकर हाई पेइंग और क्रिएटिव फील्ड्स आ चुके हैं जिसमें बच्चे जा सकते हैं और अपने करियर को बहुत अच्छे तरीके से, सुरक्षित तरीके से बना सकते हैं।
1: और जहाँ आपने साइंस की बात की, तो बिल्कुल सभी जानते ही हैं कि साइंस भी दो भागों में डिवाइड है, पीसीएम और पीसीबी। तो पीसीएम यानी मैथ्स ग्रुप के लिए डेटा साइंस, एआई इंजीनियर वर्तमान में बहुत ज़्यादा ये डिमांड वाला क्षेत्र है। और उसके अंदर भी अगर आप आते हैं तो इसमें डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम होता है। और समीना, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी, कंपनियां और सरकारों के डेटा को हैकर से सुरक्षित रखना, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन हैं इसके अंदर।
0: बिल्कुल। और इसके साथ ही अगर हम साइंस स्ट्रीम की बात करें तो एरोस्पेस और रोबोटिक्स है ना, इंजीनियरिंग में अगर बात करें तो ड्रोन टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट

0: और रोबोट्स डिजाइन करना। और आर्किटेक्चर और प्रोडक्ट डिजाइनिंग की अगर बात करें तो उसमें बिल्डिंग्स या गैजेट्स के प्रैक्टिकल और खूबसूरत डिजाइन तैयार करना। और पीसीबी की अगर बात करें बायोलॉजी ग्रुप के लिए, तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, जेनेटिक्स, मेडिकल फील्ड में नई तकनीकों, दवाओं और डीएनए रिसर्च पर भी काम किया जा सकता है। इसी तरह से न्यूट्रिशियन और डाइटिशियन यानी वेलनेस और फिटनेस इंडस्ट्रीज के बढ़ने से इसकी मांग इन दिनों बहुत ज्यादा बढ़ी है। और फार्माकोलॉजी और क्लिनिकल रिसर्च यानी कि नई दवाओं की टेस्टिंग पर रिसर्च की जो जाती है उसको। और पारंपरिक मेडिकल की अगर हम बात करें तो इसमें एमबीबीएस, बीडीएस या आयुष और वेटरनरी जो है, पशु चिकित्सक जो होते हैं, उसमें भी जाया जा सकता है। और इसके साथ ही साथ पैरामेडिकल या जो फॉरेंसिक लैब वगैरह जो होते हैं उसमें भी बहुत सारे जो है करियर ऑप्शंस चुने जा सकते हैं।
1: और इसके अलावा भी अगर हम खोजते हैं इन चीज़ों को, तो और भी बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं कि आप इसके अंदर भी किस में आपको बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है, किस में जाना चाहते हैं। और कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें तो अगर आपके बच्चे को नंबर्स, बिजनेस, स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी में दिलचस्पी है, तो यह फील्ड आपके बच्चे के लिए बहुत ही जो बहुत ही बढ़िया है। बड़ी कंपनियों का पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, मर्जर और एक्विजिशन को संभालना, ये सबसे हाई पेइंग जॉब्स में से एक है। या चार्टर्ड अकाउंटेंट और जैसे सीएससीएस, जो कि हम सभी जानते हैं कि जोधपुर जो है सीएससीएस की खान है, तो इसमें ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है बच्चों को अगर कॉमर्स में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसके अंदर भी टैक्स है, ऑडिटिंग है और कॉरपोरेट कानून के एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे आपको इसमें ऑप्शन मिलते हैं। डेटा एंड बिजनेस एनालिटिक्स है और बिजनेस के डेटा को देखकर ये तय करना कि कंपनी का मुनाफा कैसे बढ़ाया जाए। या स्टॉक मार्केट है ना, शेयर बाजार जो हम कह रहे हैं स्टॉक मार्केट, तो ये जो सारे ई कॉमर्स और सप्लाई चेन स्पेशलिस्ट हैं, ऑनलाइन बिजनेस और प्रोडक्ट की डिलीवरी है, तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करना या कॉमर्स के अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें आपके बच्चे आगे बढ़ सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो बच्चे आगे बढ़ेंगे क्योंकि उनके जो नैन हैं, उनके जो आंखों में जो सपने हैं वो बहुत ऊंचे हैं, और वो अपनी खुली आंखों से जब सपने देख रहे हैं तो उनको पाएंगे ही पाएंगे।

0: बच्चों के सपने जो है वो अनंत हैं, और उन अनंत सपनों के चलते बच्चे सोचते हैं कि हमारा जो ख्वाब है वो पूरा होना चाहिए, हम डॉक्टर बने, हम इंजीनियर बने या हम CA CS बने। लेकिन समीना, इसके अलावा आर्ट्स के अंदर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पहले ये होता था कि आर्ट्स लोग लेना नहीं चाहते थे, कि
1: बिल्कुल.
0: ये मानते थे कि आर्ट्स के अंदर ऑप्शन कम है, लेकिन अब आर्ट्स सिर्फ थ्योरी तक सीमित नहीं है, इसमें क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन और जो इंसानी व्यवहार को समझने वाले भी बेहतर करियर ऑप्शन हैं, जैसे डिजिटल कंटेंट क्रिएशन है या पॉडकास्टर है, यूट्यूबर है, स्क्रिप्ट राइटर है, या PR यानी पब्लिक रिलेशनशिप जो होती है उसके अंदर जो स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, तो बहुत उसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा अगर
1: बिल्कुल.
0: आप आर्ट्स भी
1: आर्ट्स,
0: चूज़ करते हैं
1: हाँ,
0: तो।
1: आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज जो है उसमें UI UX डिज़ाइनर है ना, मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट्स का लुक और यूज़र एक्सपीरियंस कैसा होगा, है ना, इसे डिज़ाइन करना. इसके लिए एक बात और है कि इसके लिए कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती, केवल क्रिएटिविटी को विजुअलाइजेशन करना होता है. और भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जो आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ में अपनाए जा सकते हैं.
0: एक समीना, मैं आपको बताऊँ, आजकल जो समय है ना, मेंटल हेल्थ जो है लोग उसके प्रति बहुत अवेयर हैं, और साथ साथ में आजकल मेंटली जो प्रॉब्लम है ना वो भी बहुत बढ़ती जा
1: बिल्कुल.
0: रही
1: और
0: है।
1: बच्चों को इस एज में हो जाती है, वो करियर सही तरीके से चुनाव नहीं कर पाते, तो उनके सामने भी मनोवैज्ञानिक समस्याएं बहुत सारी उभर कर आती
0: और
1: हैं.
0: इसी कारण ही क्लिनिकल और कॉरपोरेट काउंसलर्स की मांग बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा हम सिविल सर्विसेज की बात करें तो IAS IPS और जो ये सारी पोस्ट हैं ये तो है ही हैं, UPSC, स्टेट PSC की तैयारी या कॉरपोरेट क्रिमिनल लॉयर बनना, ये सब कुछ आर्ट्स में आता है। इंटरनेशनल रिलेशन है, और डिप्लोमेसी की बात करें तो दूतावास हो या इंटरनेशनल NGO में काम करना, बाहर विदेशों में इसके रूप में काम
1: जाना,
0: करना,
1: हाँ
0: ये
1: बिल्कुल
0: सारे ऑप्शन आर्ट्स के अंदर ही आते हैं।
1: बिल्कुल. और जहाँ बात करते हैं करियर के चुनाव की, तो बहुत से करियर ऐसे हैं आज के समय में मौजूद जिसके लिए किसी भी करियर ऑप्शंस में जाकर, किसी भी स्ट्रीम में जाकर के, और आप उन करियर को चुन सकते हो. या आप अगर किसी भी करियर को या किसी भी स्ट्रीम में नहीं जाना चाहते हो और करियर चुनना चाहते हो, तो उसके लिए आपको स्किल मायने नहीं रखती. जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है, या सोशल मीडिया मैनेजर जो है, फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, फिल्म मेकिंग है, एनिमेशन और VFX आर्टिस्ट जो होते हैं, उसके लिए किसी स्किल की तो ज़रूरत है, लेकिन किसी स्ट्रीम की ज़रूरत नहीं है. इसी तरह से स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप है, यानी खुद का बिजनेस शुरू करना है, आप इनमें से किसी भी स्ट्रीम में हो, है ना, तो ये करियर ऑप्शंस के रूप में आप इनको चुन सकते हैं. तो चाहे तो आपके लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं, बस आपको ये देखना है कि ये पूरी धरती आपकी है, पूरा आसमान आपका है, आप किसको चुनते हैं ये आपकी खुद की जो है वो चॉइस होनी चाहिए.
0: तो आप जिन राहों पे कदम बढ़ाते हैं, चाहे आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो चाहे बिजनेस पैतृक भी हो सकता है, चाहे आप अपने लेवल पर कुछ भी नया, आपके शौक, आपका जो शौक है उसको आगे बढ़ा के उसी को ही बिजनेस के रूप में लेना चाहते हैं, या इस तरह से कोई साइंस आर्ट्स या कॉमर्स के आप उसको चुनकर आप उसमें आगे जाना चाहते हैं, तो ये चॉइस आपकी है।
1: बिल्कुल
0: लेकिन ये इन राहों में जब आगे बढ़ेंगे तो मंजर नए नए होंगे, बहुत सारी मुश्किलें भी आएंगी, और उन मुश्किलों को आप झेलते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपका सफर बहुत ही खूबसूरत होगा।

0: तो सबीना, अब बच्चे से हमने सवाल पूछ लिए हैं कि उसको कौन सा ऑप्शन पसंद है, वो साइंस फील्ड में जाना चाहता है, आर्ट्स या कॉमर्स में, अभी तय हो चुका है और
1: बिल्कुल
0: अब उसको जाना है बाहर, घर से दूर, शहर
1: बिल्कुल
0: से
1: नए
0: दूर,
1: मंजर की ओर।
0: अपनों से दूर। तो ये वो घड़ी होती है एक माता पिता के लिए, ये पल वो बहुत ही एक अजीब सा होता है, सुकून भरा भी होता है, साथ में मन में एक डर भी होता है माता पिता के कि उसी बच्चे की उंगली पकड़कर हम उसे चलना सिखाते हैं, और एक दिन वही बच्चा जब अपने पंख फैलाकर आसमान को नापने के लिए तैयार हो जाता है, तो बच्चे करियर बनाने, अपने सपनों को सच करने के लिए घर की चौखट को पार करते हैं, तो थोड़ा सा घर सूना हो जाता है, लेकिन दिल जो है हमारा गर्व से भर भी जाता है।
1: बिल्कुल, पर सवाल ये है कि जब हमारा कलेजे का टुकड़ा या हमारा जो बहुत करीबी जो हमारा बच्चा है वो जब हमसे दूर जा रहा है या किसी अजनबी शहर में जा रहा है, तो हम उसकी पोटली में कौन कौन से संस्कार या कौन कौन सी शिक्षा बांध कर भेजें? तो सबसे पहली जो चीज़ हमें उनको देनी है वो है आत्मविश्वास की उड़ान और जड़ों का सहारा, है ना। उनसे कहिए कि बेटा तुम आसमान में जितनी ऊंचाई तक जाना चाहो जाओ, लेकिन याद रखना तुम्हारी जो जड़ें हैं वो इस घर से और यहाँ के संस्कार से जुड़ी हुई है, और नए शहर की चकाचौंध में अपनी सादगी और अपनी पहचान को कभी भी मत भूलना।
0: और दूसरी जो सबसे ज़रूरी बात वो ये है कि बच्चे को ये सिखाएं कि अकेलेपन से कैसे लड़ा जाए, क्योंकि वहाँ पे कोई भी मुश्किल होती है तो ना मम्मा होती है, ना पापा होते हैं, ना आस पड़ोस से होते हैं कि आपकी एक आवाज़ सुन के दौड़े चले जाएं। तो घर पर माँ खाना खिला देती है जब भूख ना हो, लेकिन बाहर उन्हें अपनी सेहत का ध्यान खुद रखना होता है ना। उन्हें सिखाइए कि कामयाबी सेहत से बढ़कर नहीं है, और हाँ, उन्हें यह भरोसा देकर भेजिए कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, वो खुद को कभी अकेला ना समझे, उनके माता पिता हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े हैं।
1: बिल्कुल, और कई बार बच्चे नए शहर में जाकर असफलताओं से डर जाते हैं, या अपने से जो होशियार बच्चे हैं या जो बहुत अच्छे मार्क्स अभी शुरुआत में ला रहे हैं उनसे भी डर जाते हैं। या तो उन्हें जाते जाते ये जरूर कहिए कि बेटा अगर कभी थक जाओ या कभी

0: हारने लगो या कभी तुमसे कोई गलती हो जाए तो डरना मत। ये घर और तुम्हारे माता पिता, वो हमेशा तुम्हारे साथ हैं, वो कभी भी तुम्हें जज नहीं करेंगे। और तुम्हारा सुरक्षित ठिकाना भी यही घर है, तो तुम बेझिझक वापस आ सकते हो। और ये जो एक वाक्य जो है ना आशा, ये बच्चों को डिप्रेशन से और गलत रास्तों से निकालने में बड़ा ही मददगार साबित होता है।
1: तो ईमानदारी का रास्ता, करियर की होड़ में कभी अपने जमीर से समझौता मत करना, ये जरूर बच्चे को सिखाएं।
0: बिल्कुल, पैसे की कद्र करना भी बच्चे को सिखाएं, क्योंकि मेहनत की कमाई की अहमियत समझना और जो बजट फ्रेंडली जो चीजें हैं उनको अपनाना, ये हमारे सबसे बड़े दोस्त होते हैं।
1: साथ में बच्चों को जब विदा करें तो ये भी सिखाएं कि सच्चे रिश्तों की पहचान कैसे की जाए। भीड़ बहुत मिलेगी, लेकिन अच्छे और सच्चे दोस्तों को परखना बच्चे को सीखना ही होगा।
0: बिल्कुल, और मुस्कुराहट और धैर्य का साथ हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि धैर्य जब आपके अंदर होगा तभी आपके चेहरे की मुस्कान बनी रहेगी।
1: और साथ में इस प्रोग्राम के माध्यम से हम यही कहेंगे कि बच्चे को सिर्फ विदा मत कीजिए, उन्हें दुआओं और हौसलों के साथ विदा कीजिए। रोते हुए नहीं, बल्कि मुस्कुराते हुए कहिए कि जाओ बच्चे, अपनी तकदीर खुद लिखो। हमारा जो ब्लेसिंग्स है, हमारा जो आशीर्वाद है, हर पल तुम्हारे साथ है। और तभी बच्चा जो है उड़ेगा और अपनी सफलता से उड़ान भरेगा और आसमान तक पहुँचेगा।

तो जब बच्चे को हम हॉस्टल में भेज रहे हैं उसकी हमने तैयारी कर ली, उसको संस्कार और शिक्षाएं सारी दे दी, लेकिन हॉस्टल कैसा है इसके बारे में भी तो पता होना चाहिए। तो ये

0: पेरेंट्स के लिए सबसे पहले चिंता का विषय रहता ही है कि वो बच्चा बाहर जब जाएगा तो वो इसके लिए पूरी जांच पड़ताल भी करते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि हॉस्टल का माहौल कैसा है, वहाँ के स्टाफ कैसे हैं, हॉस्टल के वार्डन का बच्चों के प्रति बिहेवियर कैसा है, वहाँ के कमरे कैसे हैं, जहाँ हॉस्टल है वहाँ के आसपास का माहौल कैसा है, खाना पीना कैसा है, सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, ये सारी बातें, और हॉस्टल में कोई गतिविधि जो है ऐसी गलत गतिविधियाँ तो नहीं हुई है, इन सारी छोटी मोटी जो बातें हैं इन पर पूरा ध्यान रखना ज़रूरी होता है। और इन सारी बातों पर जो है जाँच पड़ताल करने के बाद में ही बच्चों के लिए हॉस्टल का चयन किया जाना चाहिए।
1: क्योंकि हमने बच्चे को बहुत समझा बुझा के भेजा है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ जो होती है बिल्कुल अलग होती है। जब समस्याएं सामने आती है, जब माहौल सामने आता है, जब बच्चा अकेला वहाँ रहता है, घर के हिसाब से उसको खाना नहीं मिलता, किसी और मतलब स्टेट में चला जाता, तो खान पान बिल्कुल ही
0: बिल्कुल
1: डिफरेंस हो
0: ही
1: जाता
0: चेंज
1: है।
0: हो जाता है, क्लाइमेट बिल्कुल
1: हाँ,
0: चेंज है,
1: तो
0: सारी
1: जब खाना
0: चीजें
1: ही उसको नहीं मिलता तो वहाँ सारी चीज़ें एक बार तो रुक जाती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो यहाँ जब हम हॉस्टल चुनते हैं या कोई जगह चुनते हैं तो बच्चे को ये भी समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मुझे आदत डालनी पड़ेगी।
0: बिल्कुल
1: तो हॉस्टल डालने से
0: नहीं, आदत तो आशा जी
1: पहले
0: पहले से घर से ही डलवा कर भेजी जाए, या उसको पहले, चाहे लड़का है या लड़की, इस मंच के माध्यम से हम यही कहेंगे कि आज के समय में सभी समान हैं, तो लड़कों को भी किचन का जो कामकाज है वो ज़रूर आना चाहिए, वरना वहाँ जाकर के उनको अपनी पसंद का खाना बनाने में हिचकिचाहट होगी, या आता ही नहीं तो कैसे सीखेंगे।
1: तो बिल्कुल सही कहा आपने। और इसके साथ साथ पेरेंट्स को अपने बच्चों को हॉस्टल में डालने से पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हॉस्टल का वातावरण कैसा है, इसकी जांच पड़ताल अवश्य कर लें, और किस हॉस्टल में आप भेज रहे हैं, उसकी हॉस्टल की जो रेपो क्या है पिछले कुछ वर्षों से वो कैसी है, या वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो संगति वो कैसी है, कहीं वो गलत संगत के शिकार में तो नहीं है, क्योंकि संगति से बच्चे पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और कई बार ऐसा भी देखने आता है कि संगति के प्रभाव से बच्चा नशे की प्रवृत्ति उसके अंदर आ जाती है, जो
0: बिल्कुल
1: उसके करियर को, उसकी लाइफ को, उसके घर को पूरा बर्बाद कर देती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसके साथ ही सुरक्षा के प्रबंध, जहां हम बात करें गर्ल्स की, तो लड़कियों को अगर भेजने की बात आती है तो सुरक्षा प्रबंधों की जांच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वहां के गार्ड कैसे हैं, वार्डन कैसे हैं, उसके साथ ही साथ में आसपास का वातावरण कैसा है, वहां पे जो कैमरा वगैरह की फैसिलिटीज़ है या नहीं, या रूम में जो है वो किस तरह की सिक्योरिटी है, लाइट की पानी की व्यवस्था है या नहीं, बाथरूम्स किस तरह से बने हुए हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी भी पूरी होनी चाहिए। और हर तरह बच्चों को हम इस तरीके से बातचीत करें कि बच्चों को ये ना लगे कि वो अकेले हैं, हो सकता है थोड़ा सा समय लगेगा माहौल में ढलने के लिए, लेकिन उनको ये विश्वास दिलाते रहें कि आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं।
1: क्योंकि कारण ये है ना, जब बच्चा 12th में बम्पर मार्क्स ले आता है, उसको अच्छा कॉलेज मिल जाता है, तो पेरेंट्स तो ये उम्मीद लगा ही देते हैं और बच्चा खुद भी कि अब तो मेरा भविष्य बन चुका है, लेकिन रास्ता अभी भी चल रहा है, अभी भी मंजिल मिली नहीं है, अभी भी सावधानियां बहुत ही ज़रूरी है। तो बच्चों को हॉस्टल में डाल रहे हैं, अच्छे मार्क्स उनके आ चुके हैं, लेकिन वहाँ जाकर बच्चे तनाव में आकर आत्महत्या तक कर लेते हैं,
0: बिल्कुल
1: जो कि बहुत ही एक दुखद पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी घटना होती है, अगर बच्चा कॉलेज में जाके या पढ़ते वक्त आत्महत्या कर लेता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, बच्चे को मतलब बार बार उसको फोन करते रहें, उसका सारा हाल जानते रहें, उसके मन की बातें समझें, वो क्या कह रहा है, उसका मन लग रहा है, नहीं मन लग रहा है, अब जो उसको पढ़ाई समझ आ रही है, उसको माहौल समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इस बात का विशेष रूप से पेरेंट्स ध्यान रखें।
0: बिल्कुल
1: तो क्योंकि एक बार वो पढ़ाई में असफल हो जाए चल जाएगा, है ना, बहुत सारे रास्ते मिल जाते हैं,
0: बिल्कुल
1: बच्चा
0: बिल्कुल,
1: एकदम से दूसरा ऑप्शन चुन लेता है, जो अभी तक उसने चुना उसके ऑपोजिट भी चुन सकता है वो,
0: क्योंकि रास्ते
1: लेकिन
0: खत्म नहीं हुए
1: हाँ,
0: हैं, बहुत
1: लेकिन
0: सारे
1: अगर
0: ऑप्शंस हैं।
1: लाइफ तक खत्म हो गई एक बार तो फिर तो कुछ नहीं मिलने वाला।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और इसके साथ में टाइम मैनेजमेंट करना, क्योंकि यहाँ स्कूल वाली लाइफ से निकल करके जब वो यहाँ पे पहुँचे हैं, अब उन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है, तो टाइम मैनेजमेंट करना भी बच्चों को आना चाहिए, और जब टाइम मैनेजमेंट सीख जाएगा तो फिर जो उसका दिल चाहता है वो कर ही लेगा।

0: तो दिल चाहता है, और जब दिल चाहता है वो स्ट्रीम्स हमें मिल जाती है और करियर में भी सफल होने लगते हैं ना। तो हॉस्टल की लाइफ जब वहाँ रम गए हैं है ना, तो वहाँ की जो लाइफ है वो भी बहुत अच्छी लगने लगती है। यानी आज़ादी का पहला एहसास, नए दोस्त, नई जगह, देर रात तक उनके साथ में बातें करने का भी मौका मिलता है, वीकेंड्स पर घूमने फिरने का प्लान भी बनता है, मनोरंजन और दोस्तों के साथ आउटिंग इस लाइफ का बहुत खूबसूरत सा हिस्सा होता है और होना भी चाहिए। लेकिन इस आज़ादी के साथ में आती है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। तो बात करते हैं कि किस तरह से घूमते फिरते हुए फुल एंटरटेनमेंट के साथ में हम होश रखते हुए सावधानी को भी साथ में बरतें और जोश में जोश को बरकरार रखें लेकिन होश को ना खोएं।
1: तो हॉस्टल लाइफ की जब हम बात कर रहे हैं तो पहली बार ग्रुप बनाकर बाहर निकलते हैं ना, तो चाहे फिर वहाँ आप किसी सुनसान रास्ते से जा रहे हैं, कोई ऐसा पिकनिक स्पॉट है वहाँ पे कहीं सुनसान रास्ता है, या कोई नया कैफ़े है, या फिर शहर का कोई अनजान कोना जहाँ आप घूमने निकल पड़े हैं बेबाक रूप से, आज़ादी से। लेकिन बेहद ज़रूरी है, सावधानियाँ हमेशा याद आपको रखनी ही पड़ेगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो हम सबसे पहले ये ध्यान रखें कि हम जहाँ पे भी जा रहे हैं उसकी लोकेशन को शेयर करें। तो आप अपने ग्रुप के साथ में कहीं जा रहे हो इसकी जानकारी अपने हॉस्टल के वार्डन, रूममेट या फिर घर में मम्मी पापा को ज़रूर दे करके जाएं। और आजकल जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य को लाइव लोकेशन शेयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
1: और आसपास के वातावरण पर एकदम पैनी नज़र रखें, और मस्ती के मूड में भी आसपास के माहौल को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें करें क्योंकि कोई कौन आपको, आपकी जो एक्टिविटी है, आपको इस एंजॉय को, आपकी इस मौज मस्ती को बहुत ज़्यादा देख रहा है, तो उसका आप ध्यान रखें कि आपके आसपास का माहौल कैसा है। और अगर आपको लगे कि जहाँ आप घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वो जगह सुरक्षित नहीं है, या वहाँ मौजूद कुछ लोगों का व्यवहार ठीक नहीं है, तो बिना झिझक, बिना संकोच पहली बार में आप वो
0: जगह
1: तुरंत
0: छोड़ दें
1: वहां से
0: फिर
1: हाँ निकल जाएं और अपनी गट फीलिंग पर हमेशा भरोसा करें।
0: बिल्कुल। आपातकालीन नंबर हमेशा अपने साथ में रखें, लोकल पुलिस, एम्बुलेंस, कॉलेज, हॉस्टल

0: के अधिकारियों के नंबर हमेशा हमारे स्पीड डायल पे होने चाहिए, और अगर जब आप गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हमेशा फुल चार्ज रखें, या फिर आपके साथ में पावर बैंक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
1: तो सखियों आपको बता दें कि हम सभी के लिए मनोरंजन बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमें रिचार्ज करता है, लेकिन याद रखिए असली समझदारी इसी में है कि हमारी मस्ती किसी भी तरह की मुसीबत में ना बदले, क्योंकि आप जब माता पिता के तौर पर आप जब बच्चे को ये सिखाते हैं तो बच्चा ये ज़रूर ध्यान रखे कि अपनी सुरक्षा के प्रति सजग रहे और अपने आप को मजबूत बनाए रखें।
0: बिल्कुल।

0: तो सखियों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, और चलते चलते हमें ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा जो आज का ये प्रोग्राम है नारीवाटी का, ये कुछ कुछ आपसे जुड़ा हुआ महसूस हुआ होगा, और आपको बहुत सारी गाइड्स जो है चीज़ें जो है वो सही भी लगी होगी और बहुत अच्छे से समझ में भी आई होगी। अब चलते चलते आपको टीम नारीवाटिका से रूबरू करवा दें कि ट्रांसमिशन से आज हमारे सहयोगी रहे पारसपुरी गोस्वामी और फारूक अहमद शेख, और कंट्रोल रूम से हमारा सहयोग किया सुनील जयपाल ने, और एफएम ट्रांसमिशन से हमारे साथ थे सीएल सोनी।
1: और कंसोल से इस पूरे प्रोग्राम को आप तक पहुंचाया उगम सिंह राजपुरोहित ने, संयोजन थे मनीष सोलंकी, और इसके साथ ही आपकी दो प्यारी प्यारी सखियां, आपकी रेडियो सखी आशा आडवाणी और मेरे साथ थी।
0: समीना, तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: आधी आबादी नारी शक्ति को समर्पित कार्यक्रम नारी वाटिका अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी और FM सन सिटी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, दिन के 2:15 होने को हैं। थोड़ी ही देर में हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीक

0: की कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डोरन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। और दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 3 दिन में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं की उपस्थिति में आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा, आपदा प्रबंधन तथा औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
1: हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरिटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हुए समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में आसानी होगी।
1: पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की यूपीआई इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर की संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने इसे भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया।
1: मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए प्रेसिडेंट प्राबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लोकसभा अध्यक्ष

0: अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंगतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर बधाई दी है।
1: रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये असाधारण सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, परिवर्तनकारी राजनीतिज्ञता और आपसी विश्वास, सम्मान और साझा प्रगति पर आधारित वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करते हुए भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता की एक सशक्त मान्यता है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि ये सम्मान सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये देश के लिए गर्व का क्षण है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत इंडोनेशिया साझेदारी को और मजबूत करता है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति एवाई कोगजे और न्यायमूर्ति समीर दवे की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी अपीलें खारिज कर दी और मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों को दी गई सजा को बरकरार ते हुए अपने फैसले को सही ठहराया। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर लगातार हुए 21 बम धमाकों में 56 लोग मारे गए थे और 200 अन्य घायल हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डोरन कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उनसे खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने का आग्रह किया।
2: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत आज 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्री शाह ने कहा कि रिज के लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र को अब औपचारिक रूप से वन भूमि घोषित कर दिया गया है।
3: 6300 हेक्टेयर हरित रिज दिल्ली का फेफड़ा बनकर दिल्ली के पर्यावरण की सुरक्षा करेगी। 1 करोड़ से अधिक देसी पौधे, 35 लाख से ज्यादा बड़े बड़े वृक्ष के पौधे और 65 लाख अन्य झाड़ियां, बांस और औषधीय रोपे लगाने का काम होगा।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 14 किलोमीटर लंबी जोजीला सुरंग, जम्मू श्रीनगर कॉरिडोर पर 36 सुरंगें, केदारनाथ रोपवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी प्रमुख परियोजनाएं कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही हैं और देश के विकास को गति दे रही हैं। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय विकास के लिए ज्ञान, नवाचार और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के केंद्र के रूप में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। भुवनेश्वर में आज दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन

0: करते हुए जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने जनजातीय विरासत को संरक्षित करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी ज्ञान को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करने का आह्वान किया।
1: जनजाति समूह का सामूहिक विकास ये नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है। इसके कारण बहुत सारे बंधन केंद्र और उसके साथ साथ बहुत सारे रिसर्च कार्यक्रम हम कर रहे हैं और उसका क्रम में आज किया रही ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका देश भर का 29 जगह से आके यहाँ योगदान दिया है और उनका काम आगे बढ़ रहा है। मेरा ख्याल से ये बहुत बढ़िया मैसेज होगा और जनजाति के लिए लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए 48 घंटे का समय दिया है। कमेटी ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। हजारों लोग कथित नाकाबंदी को समाप्त करने, संचार सेवाओं की बहाली, भोजन और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और 38 सूत्री लिखित समझौते के कार्यान्वयन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद से प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 3 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने कई जिलों, विशेष रूप से पालघर, ठाणे और पुणे तथा नासिक में बारिश के लिए चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुणे जिले के घाट क्षेत्र, लोनावला, माहौल, तामिनी और भोर में लगातार तेज बारिश जारी है, जिससे नदियों और नाले उफान पर है। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों से झरनों और पहाड़ों इलाकों में जाने से बचने की अपील की है। इस बीच मुंबई और पुणे के बीच सड़क संपर्क बहाल कर दिया गया है। नासिक के घाट क्षेत्र, जिनमें इगतपुरी और त्र्यंबकेश्वर शामिल है, में भी अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई है। मुंबई महानगर क्षेत्र में बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आई है, हालांकि ठाणे और पालघर जिले के कुछ हिस्सों में अब भी भारी बारिश जारी है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उधर गुजरात में भी कई जगहों, खासकर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में लगातार हो रही तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र के दौरान सपाट कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 46 अंक बढ़कर 78,331 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 10 अंक बढ़कर 24,440 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौतों, ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, दिन के 2:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम उमंग में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने। लिखते हैं,
2: संभव कार्य करने के लिए ताकत चाहिए किंतु असंभव कार्य करने के लिए आत्मविश्वास और समर्पण चाहिए।
1: बहुत सुंदर विचार, आप सबको धन्यवाद। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ लुकाऊपाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
1: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामण शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू।
2: और राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे आपके सबके प्यारे कार्यक्रम उमंग से। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी विभिन्न खनिजों के बारे में। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आई तो जरूर लिख भेजिएगा अपनी प्रतिक्रियाएं
1: जी।
2: तो अजीत जी, क्यों ना इस सप्ताह हम चर्चा करें एक ऐसी चीज की जो हम सबके चारों ओर उपलब्ध है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी भी है, लेकिन
1: जी लेकिन उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की
2: जी।
1: आज हम चर्चा करेंगे पेड़ों के बारे में और लेंगे उनके बारे में दुर्लभ जानकारियाँ। तो आइए शुरू करते हैं विमलेश जी से।
2: जी अजीत जी, तो श्रोताओं आपको बता दें, पेड़ हमारे ग्रह यानी पृथ्वी के सबसे पुराने, बड़े और महत्वपूर्ण जीव हैं। इनकी उत्पत्ति लगभग 40 करोड़ साल पहले हुई थी। ये जानवरों और मनुष्यों की उत्पत्ति से भी बहुत पहले के हैं।
1: जी विमलेश जी, प्राप्त दुर्लभ जीवाश्मों से पता चलता है कि पेड़ पौधों के पैदा होने के लगभग 40 करोड़ वर्षों के बाद मनुष्य और शेष जीव जगत अस्तित्व में आया
2: जी।
1: विमलेश जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर क्या परिवर्तन आए।
2: जी अजीत जी, सचमुच ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ी, मिट्टी बनी और कार्बनिक गैसें कम हुई, जिनसे जानवरों के लिए भूमि पर रहना आसान हुआ। बिना पेड़ों के ऑक्सीजन कम मिलती, जिसके कारण स्थलीय जीवों का रहना असंभव हो जाता
1: जी। तो ये तो बात हुई पेड़ पौधों की उत्पत्ति की
2: जी।
1: चलिए अब जानते हैं पेड़ों के बारे में कुछ रोचक बातें। इनकी दुनिया ऐसे दुर्लभ और अनोखे रहस्यों से भरी है जो श्रोताओं सचमुच हमें हैरान कर देंगी
2: जी। सचमुच, तो श्रोताओं आपको बता दें कि पेड़ों का अपना सोशल नेटवर्क होता है, जिसे वनस्पति विज्ञानी वुड वाइड वेब कहते हैं।
1: अरे वाह, वुड वाइड वेब यानी यहाँ भी इंटरनेट की तरह www है
2: जी।
1: लेकिन विमलेश जी, ये होता क्या है?
2: अजीत जी, ये कोई इंटरनेट नहीं है, लेकिन पेड़ों और पौधों के बीच भूमिगत संचार का प्राकृतिक जाल है
1: जी। हमने अक्सर मातृ वृक्षों के बारे में सुना और जाना है।
2: बिल्कुल,
1: मातृ वृक्ष उन्हें कहते हैं जो वृक्षों के समूह में सबसे बड़े और पुराने होते हैं। उनकी जड़ें सूक्ष्म कवक या फंगस द्वारा दूसरे पेड़ों से जुड़ जाती हैं।
2: जी।
1: इसके माध्यम से पेड़ आपस में पानी, पोषक तत्व और रासायनिक संदेश एक दूसरे को भेज सकते हैं
2: जी। ये जड़ें कमजोर या छोटे पौधों को पानी और अन्य पोषक तत्व भेजती रहती हैं। ऐसे पेड़ों को मातृ वृक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक माता की तरह दूसरे पेड़ पौधों का पालन पोषण करते हैं। तो ये तो बात हुई पोषक तत्वों की। अजीत जी, आपने कहा कि पेड़ एक दूसरे को रासायनिक संदेश भी भेजते हैं, इसे जरा श्रोताओं को तो बताइए।
1: जी विमलेश जी, ये जानना सचमुच बहुत रोचक होगा। देखिए, पेड़ पौधे बोल तो नहीं सकते, लेकिन वे रासायनिक संकेतों के माध्यम से एक दूसरे को हवा और कवकों के माध्यम से संदेश भेजते हैं
2: जी।
1: ये प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था है।
2: श्रोताओं, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब किसी पेड़ या पौधे पर कीटाणु हमला करते हैं, तो वे पत्तियों द्वारा हवा में एक विशेष प्रकार का रसायन छोड़ते हैं, जिसे दूसरे पौधे या पेड़ मानो सूंघ लेते हैं और वे पहले से ही रक्षा रसायन बनाना

0: शुरू कर देते हैं।
1: और इस प्रकार से उन्हें आने वाले खतरे की चेतावनी मिल जाती है, इससे उनकी रक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि पेड़ पौधों में बहुत धीमे विद्युत संकेत भी कार्य करते हैं।
0: तो श्रोताओ, पेड़ों के बीच का संचार मूक है लेकिन बहुत प्रभावशाली होता है। वे बेशक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन रसायनों, आपस में जुड़ी हुई जड़ों, कवकों और विद्युत संकेतों द्वारा वे आपस में संवाद कर सकते हैं।
1: एक बात और श्रोताओ, पेड़ पौधों में भी रोगों या चोट के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता होती है। जब उनकी छाल कटती है या छीली जाती है तो वे एक प्रकार का रसायन बनाकर अपने घाव को भरने का प्रयास करते हैं।
0: जी,
1: इसलिए आपने देखा होगा कि जब इनकी छाल छीली जाती है तो कुछ समय बाद वहाँ नई छाल विकसित हो जाती है। ये ऐसा ही है जैसा कि हमारा शरीर भी प्राकृतिक रूप से घावों को भर सकता है।
0: इसलिए जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े जीवित समुदाय की तरह कार्य करता है। तो श्रोताओ, कैसी लगी ये जानकारी हमें जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है श्रोताओ, मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों?
1: आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम चींटी।
0: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें चींटी के परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बारे में एक सुंदर गीत द्वारा बताया गया है तथा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन में निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें।
1: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
1: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
1: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
1: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
1: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
1: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
1: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत चींटी, और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है नील के किनारे।
1: इस कार्यक्रम में मिस्र की प्राचीन सभ्यता के विकास में नील नदी की भूमिका के बारे में बताया गया है।
2: Your attention please. Air India announces the arrival of its flight number AI-806 from Bombay. Your attention please. Air India announces.
3: पापा, कायरा का ये हवाई अड्डा कितना शानदार है।
4: हाँ बेटा।
3: दादाजी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे।
4: यहीं कहीं होंगे, अभी मिल जाएंगे। अच्छा चलो, सामान की ट्रॉली लेकर उधर से निकल चलते।
3: मुझे लगता है दादाजी आए ही नहीं। याद है जब हम उनके पास मॉरिशस गए थे ना, तब भी वो हमें लेने नहीं आए थे।
4: अरे बेटी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो जानबूझकर हमें लेने नहीं आए थे। याद नहीं, उन्हें भारतीय दूतावास के किसी जरूरी काम से सुरिनाम जाना पड़ गया था।
3: तो अब भी उन्हें दूतावास के काम से कहीं जाना पड़ गया होगा।
4: हो सकता है कि...
5: हेलो मिस्टर वर्मा, माफ कीजिए मुझे आने में देर होगी।
4: अरे कादिर, तुम पिताजी नहीं आए?
5: दरअसल उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। उन्होंने कल रात मुझे फोन करके कहा कि मैं आपको लेने हवाई अड्डे पहुंच जाऊंगा। आपको घुमाने की जिम्मेदारी भी मेरी।
4: अच्छा अच्छा, कादिर मेरी बेटी श्वेता से मिलो। और श्वेता, ये है अब्दुल कादिर मोहम्मद फादल।
3: अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम। अरे वहाँ श्वेता बिटिया को तो मिस्री अभिवादन भी आता है। चलिए मिस्टर वर्मा, बाहर गाड़ी खड़ी है, आपको आपके पिताजी के घर पहुँचा दो।
4: ठीक है, चलो श्वेता अपना हैंडबैग उठा लो, आओ आओ चलो।

0: सुनाओ कादिर, तुम्हारा शोध कार्य कैसा चल रहा है?
1: अब तो पूरा होने वाला है।
2: कादिर अंकल, आप किस पर शोध कर रहे हैं?
1: मिस्र की प्राचीन सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता की पारस्परिक समानताओं पर।
0: इसी सिलसिले में कादिर 2 साल भारत में भी आकर रहे थे।
2: अच्छा, तभी तो आप इतनी अच्छी हिंदुस्तानी बोल लेते हैं।
3: अरे कादिर अंकल, मैंने तो सोचा था काहिरा पुराने ढंग का शहर होगा, लेकिन यहाँ तो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं।
1: बेटा, ये काहिरा का नया भाग है। जैसे तुम्हारी नई दिल्ली है ना, काहिरा भी दिल्ली की तरह कई बार उजड़ा और कई बार बसा। दिल्ली की ही तरह इसके नाम भी बदलते रहे। आज इसका नाम अल काहिरा है।
3: अच्छा, काहिरा नहीं अल काहिरा।
1: हाँ।
3: पापा पापा, वो देखो नील नदी है ना।
0: हाँ, वो नील नदी ही है

0: काहिरा शहर नील के किनारे बसा हुआ है। जानती हो, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6648 किलोमीटर है।
1: लीजिए, वो रहा आपके पिताजी का घर। मिस्टर वर्मा, घर में एक नौकर है, वो आपकी देखभाल करेगा। अभी आप लोग आराम करें, मैं शाम को आऊंगा, फिर आपको काहिरा शहर घुमाने ले चलूंगा।
0: अरे कादिर भाई, एक प्याला चाय तो पीते जाओ।
1: नहीं, अभी नहीं, शाम को। अभी मुझे एक व्यक्ति से मिलने जाना है अपने शोध कार्य के सिलसिले में। अच्छा, मैं चलता हूं।
0: अच्छा अच्छा

0: आदिर अंकल, ये बाजार तो बिल्कुल पुरानी दिल्ली जैसा है। फुटपाथ पर लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं और देखिए कैसे आवाजें लगा लगा कर सामान बेच रहे हैं।
1: और वो देखो उस दुकान पर सूती कपड़े के कितने थान रखे हैं। जानती हो बेटी, मिस्र की कपास सबसे बढ़िया मानी जाती है।
0: पापा, यहाँ के लोगों की वेशभूषा कितनी अच्छी है। पुरुषों ने लंबा सा चोगा पहन रखा है और ढीला पजामा, सिर पर टोपी है।
2: इस चोगे को गलाबिया कहते हैं।
1: और वो देखो औरतों ने लंबी बाहों वाले कुर्ते पहन रखे हैं।
0: हाँ, बुर्के में कुछ ठीक से दिख नहीं रहा। अच्छा कादिर अंकल, सभी औरतों ने तो बुर्का नहीं पहन रखा, ऐसा क्यों?
2: अब धीरे धीरे बुर्के का रिवाज कम होता जा रहा है।
1: अरे बाप रे, यहाँ कितनी भीड़ है। कादिर, क्या आज कोई खास बात है?
2: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, खास बात यही है कि यहाँ की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। रोजगार की तलाश में लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं। जानते हैं काहिरा की जनसंख्या 1000 व्यक्ति प्रतिदिन की दर से बढ़ रही है, और नतीजा ये कि यहाँ लोगों के पास रहने को घर नहीं।
0: अच्छा, तो फिर ये लोग कहाँ रहते हैं?
2: कुछ लोग इमारतों की छतों पर अपना घर बना लेते हैं, कुछ मकबरों और कब्रिस्तान में डेरा जमा लेते हैं, कुछ तो झुग्गियां बनाकर रहते हैं।
0: दिल्ली में भी तो बहुत से लोग झुग्गियों में ही रहते हैं।
2: हाँ, मैंने कहा था ना कि दिल्ली और काहिरा की बहुत सी बातें मिलती हैं। चलो आओ, तुम्हें जलेबी खिलवाएं।
0: जलेबी? वैसी ही जैसे हमारे देश में मिलती है?
2: हाँ बिल्कुल वैसी।
1: कमाल है
2: मिस्टर वर्मा, जलेबी नहीं, यहाँ बालूशाही, फेनी, मेवे का हलवा, सभी मिठाइयाँ मिलती हैं।
1: वाह।
2: और ईद के मौके पर सिवैयाँ भी मिलती हैं।
0: मैं तो मेवे का हलवा खाऊंगी।
2: ठीक है, चलो उस कोने पर दुकान है जहाँ मेवे का हलवा बहुत बढ़िया बनता है,
1: और इसके बाद घर लौट जाएंगे।
0: इतने जल्दी?
1: अरे कल सुबह पिरामिड देखने नहीं जाना क्या?
0: हाँ जाना है।
2: फिर ठीक है, कल मैं आप लोगों को सुबह लेने आऊंगा। अभी चलकर मेवे का हलवा खाते हैं।

0: पापा, यहाँ तो चारों तरफ रेगिस्तान है। हम लोग काहिरा से कितनी दूर आ गए हैं?
1: कोई 8 मील दूर। वो देखो श्वेता, वो रहा गीजा का महान स्फिंक्स।
0: बाप रे, कितना विशाल है
1: ये स्फिंक्स। 18 मीटर ऊंचा और 57 मीटर लंबा है। कहते हैं ये 5000 वर्ष पुराना है।
0: अच्छा कादिर अंकल, स्फिंक्स का चेहरा आदमी जैसा और बाकी शरीर बैठे हुए शेर जैसा क्यों बनाया गया है?
1: पहले लोग ये रहस्य नहीं जानते थे, लेकिन फिर इस विशाल स्फिंक्स के पंजों के बीच एक प्रार्थना कक्ष में एक शिलालेख मिला, जिससे पता चला कि ये स्फिंक्स सूर्य देव हर्माचीज का एक रूप है। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी जिससे ये गीजा के पिरामिडों को शैतानी शक्तियों से बचा सके।
2: वाकई बड़ा भव्य है। अच्छा ठीक है, अब भीतर चलकर पिरामिड देखते हैं।
0: चलिए पापा।
1: यहाँ गीजा में 3 पिरामिड हैं। वो देखो सबसे बड़ा पिरामिड, जानती हो श्वेता इसकी ऊंचाई कितनी है?
0: क्या पता, ये तो पहाड़ जैसा लगता है।
1: हाँ, इसकी लंबाई 147 मीटर है।
0: कादिर अंकल, इन्हें क्यों बनवाया गया था?
1: दरअसल ये पिरामिड प्राचीन मिस्र के राजाओं या फैरों के मकबरे हैं, जैसे आगरे का ताजमहल है ना।
2: इसका मतलब इन पिरामिडों में फैरों की कब्रें हैं।
1: कब्रें नहीं है, शव रखे हैं, जिन्हें ममी कहते हैं। ममी शब्द अरबी भाषा से आया है, जिसका मतलब है संरक्षित शरीर।
0: मिस्री लोग शव को संरक्षित क्यों रखते थे?
1: उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। वो ये मानते थे कि आत्मा पक्षी की तरह दिन भर उड़ती फिरती

0: है और रात होने पर अपने शरीर में लौट आती है, इसलिए शरीर को संरक्षित करना जरूरी था, नहीं तो वो लौट कर कहाँ आती।
1: कादर, मम्मी बनाने का काम बड़ा जटिल होता होगा।
0: हाँ मिस्टर वर्मा, इसमें 70 दिन लगा करते थे।
1: ओ, तो क्या हर व्यक्ति की मम्मी बनाई जाती थी?
0: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, प्राचीन मिस्र के लोग शव को रेगिस्तान की गर्म रेत में दफना दिया करते थे और रेत उन्हें सुरक्षित रखती थी। फिर बाद में महत्वपूर्ण लोगों के लिए मकबरे बनाए जाने लगे, लेकिन इन मकबरों के भीतर उतना सूखापन नहीं होता था जितना बाहर की रेत में होता था।
1: ओ,
0: इसलिए शव को संरक्षित करना जरूरी हो गया, नहीं तो वे नष्ट हो जाते।
2: पापा पापा, वो देखिए एक लड़का कितनी तेजी से उस पिरामिड पर चढ़ा चला जा रहा है।
0: बस अब तुम कुछ पैसे निकाल लो।
2: किस लिए?
0: ये लड़का 6 मिनट 47 सेकंड में पिरामिड पर चढ़कर लौट आएगा और इस कर्तव्य के लिए पर्यटकों से इनाम मांगेगा।
3: अरे वो देखो वो उतरने भी लगा।
2: पापा, आगरा के पास फतेहपुर सीकरी का जो किला है ना, उसके 54 मीटर बुलंद दरवाजे से भी तो एक आदमी नीचे पानी के कुंड में छलांग लगाता है और फिर देखने वालों से इनाम लेता है।
3: अरे लो, वो उतरकर हमारी ओर ही आ रहा है। वाह वाह, शाबाश बेटा शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। ये लो, ये हमारी तरफ से इनाम।
2: पापा, मैं भी पिरामिड पर चढ़कर देखूं?
3: अरे नहीं बेटा, ये इतना आसान नहीं है, थककर चूर हो जाओगी। देखो अभी तो स्टीमर में बैठकर हमें नील नदी की सैर भी करनी है। हाँ
2: तो फिर चलिए।
3: हाँ तो आओ, चलो आओ, खादे आओ।

0: श्वेता, कहो कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा अंकल। देखिए, काहिरा शहर तो वो पीछे छूट गया। पापा कहाँ हैं?
0: अभी आ रहे हैं। स्टीमर की कैंटीन से कुछ खाने पीने का सामान लेने गए।
1: चलो अच्छा है, मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है।
0: वो देखो श्वेता, नील नदी के दोनों ओर हरे भरे खेत दिख रहे हैं।
1: और खेतों में वो औरतें क्या कर रही हैं?
0: कपास चुन रही हैं। जानती हो, कपास नील घाटी की प्रमुख फसल है। यहाँ एक साल में कपास की 3 फसलें उगाई जाती हैं।
1: अच्छा, उस खेत में किसान हल चला रहा है और बैल हल खींच रहे हैं। ये तो हमारे देश जैसा ही है। अंकल, यहाँ ट्रैक्टर नहीं चलते?
0: अरे मिस्र में खेती की जमीन ही कितनी है, बस नील नदी के किनारे किनारे ही तो, बाकी सब तो रेगिस्तान ही है।
2: फिर भी हमें आपका देश बहुत आकर्षक लग रहा है।
1: पापा, मेरे लिए खाने को क्या लाए?
2: ये तले हुए आलू, डबल रोटी की सैंडविच, दूध और कहवा।
0: ओह शुक्रिया। मिस्र की 3 खास चीजें हैं, कहवा, गप्पे और हुक्का।
2: अच्छा ठीक है, तो कहवा तो ये रहा, अब गप और हो जाए।
0: इसके लिए तो आपको किसी कहवा घर में चलना पड़ेगा।
2: क्यों?
0: वहाँ लोग कहवा पीते हैं, हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और गप मारते हैं।

0: अंकल, वो औरतें सर पर क्या रख कर लेके जा रही हैं?
1: अपने आदमियों के लिए खाना। किसान सुबह से शाम तक खेतों पर काम करते हैं और औरतें घर व बच्चों की देखभाल करती हैं और खाना बनाकर लाती हैं।
2: अपने गांव जैसा लगता है ना सब कुछ।
1: जी हाँ, भारत और मिस्र की प्राचीन सभ्यता में भी बड़ी समानता है। मिस्र के लोग सूर्य देवता की पूजा किया करते थे। मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी। पिता नील की भी पूजा की जाती थी। अच्छा श्वेता, एक पहेली पूछो।
0: पूछिए।
1: हर साल जुलाई से लेकर अक्टूबर तक नील नदी में पानी चढ़ता जाता है, जबकि यहाँ वर्षा नाम मात्र की होती है, बताओ कैसे?
0: हर साल पानी चढ़ता है।
1: हाँ, इतना कि कभी कभी बाढ़ आ जाती है।
2: और मिस्र में वर्षा होती नहीं।
1: हाँ,
2: अजीब सी बात है।
1: हार गए?
0: हाँ अंकल, आप ही बताइए ना, ऐसा क्यों होता है?
1: प्राचीन मिस्र के लोग भी इस रहस्य को कभी नहीं समझ पाए। 19वीं शताब्दी के अंत में जाकर इसका भेद खुला।
2: अच्छा, वो कैसे?
1: देखिए, नील नदी में दो नदियों का पानी आकर मिलता है, सफेद नील का और नीली नील का। सफेद नील युगांडा की विक्टोरिया झील से निकलती है। पूरे साल उसमें पानी

0: पानी एक जैसा रहता है, इसलिए उसके कारण तो पानी बढ़ नहीं सकता। लेकिन नीली नील इथियोपिया के पहाड़ों से निकलती है, पहाड़ों की बर्फ पिघलकर नीली नील में बहती है। साथ ही इथियोपिया के पठारी क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, उसका पानी भी नीली नील में आता है। बस इसी कारण हर साल नील नदी का पानी चढ़ता है।
1: मैं सोच रही थी कि ऐसी ही कोई वजह होगी, पर
2: ए श्वेता, तुम झूठ कब से बोलने लगी?
0: जानते हैं, प्राचीन मिस्र के लोग नील नदी में आने वाली इस बाढ़ को देवताओं का क्रोध मानते थे, इसलिए हर साल देश की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी का चुनाव किया जाता। बड़ी धूमधाम के साथ पिता नील की पूजा की जाती। और फिर उस सुंदरी को नदी में फेंक दिया जाता।
1: कितनी बुरी बात है।
2: सो तो है, लेकिन उस समय के लोग बाढ़ का सही कारण नहीं जानते थे ना।
0: अब तो जान गए हैं, फिर भी ये प्रथा कायम है। बस अब सुंदरी के स्थान पर एक गुड़िया अर्पित की जाती है।
1: गुड़िया ही क्यों, गुड्डा क्यों नहीं?
2: हाँ भाई कादिर, इस सवाल का जवाब दो तो जाने।
0: इसका जवाब मेरे पास तो है नहीं, मैं पूछकर बताऊंगा।
1: अंकल सुनिए, कोई गीत गा रहा है उधर खेतों में, है ना?
2: वाह, कितना सुंदर गीत है। अच्छा कादिर, क्या हम लोग आसमान बांध देख सकते हैं?
0: इस स्टीमर से तो नहीं, कल कार से आपको मैं वहां ले चलूंगा।
1: वहां क्या है अंकल?
0: 364 फीट ऊंचा और 12,565 फीट लंबा बांध है बेटा, जिसके पीछे 300 मील लंबी झील बनाई गई है। इसे नासिर झील का नाम दिया गया है।
2: इस बांध के बन जाने से मिस्र के लोगों को काफी फायदा हुआ होगा।
0: हाँ बिल्कुल, अब सिंचाई आसानी से हो जाती है। बांध से पैदा हुई बिजली से उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है, लोगों के जीवन में खुशहाली आई है।
2: आबू सिंबल के मंदिर भी यही कहीं है ना कादिर?
0: हाँ, बांध के पास ही पहाड़ी पर। जानते हैं, बांध के पीछे जो झील बनाई गई है, ये मंदिर उसमें डूब गए होते, लेकिन वैज्ञानिकों और पुरातत्व विशेषज्ञों ने इन मंदिरों को बड़ी होशियारी से घाटी से हटवाकर पहाड़ी पर स्थापित करवा दिया।
1: पापा मैं भी देखूंगी वो मंदिर।
2: अरे मुझसे कहने का क्या फायदा बेटा, अपने कादिर अंकल से कहो।
1: अंकल ले चलेंगे ना हमें?
0: हाँ हाँ, अगर तुम एक पहेली बूझ दो तो।
1: क्या फिर से पहेली? क्या आबू सिंबल के मंदिर की भी कोई पहेली है?
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नील के किनारे, और अब इसी के साथ हम अपने उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहते हैं। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। कल फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार,
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। दिन के 3 बज रहे हैं। अब हमारी ये पहली सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे दूसरी सभा में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।